बार की शिक्षा विभाग ने प्रधानमंत्री जी की विजनरी सजेशन को एक आश्रम में परिवर्तित किया है। एक बहुत क्रिटिकल स्क्रूटिनी के माध्यम से हजारों प्रपोजल के अंदर से 120 स्टार्टअप को सिलेक्ट किया गया है। 13 प्रायोरिटी सेक्टर में 120 स्टार्टअप को इकट्ठा किया गया है और इसमें लगभग 20 से ज्यादा भारत की प्रीमियर इंस्टीट्यूशन की पार्टनरशिप रहा है।

पर कभी बोल पाए हैं। उसका प्रकाश ये परिचय देता है कि इसी प्रकार आप अगर हमसे कुछ नहीं बोले बस अच्छे कर्म करते रहे, यही आपका परिचय देगा। ये था आज का संदर्भ।

से भी आज से तारीख होने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा। हमारा अगला कार्यक्रम 6:35 श्री राम नमस्कार 6:45 पर संजीव चरित्र कार्यक्रम में होगी श्रृंखला गजब के बाद

cinco mais. शाम 4 बजे के तारा के अंतर्गत बॉम्बे टॉपिक में आपको सुनवाएंगे कोरियोग्राफर एलन क्रूज से अमेरिकन टेलीविजन की बातचीत। ठहरे गए कार्यक्रम का पुनः प्रसारण होगा शाम 5 बजे से।

कई पराठ के विशेष हमारा कार्यक्रम का प्रसारण होगा शाम 7 बजे शाम 7:45 पर इंद्रधनुष के अंतर्गत सुनने का प्रोग्राम किया था।

से मुनि वशिष्ठ अत्यंत प्रभावित थे। उनकी अंतरात्मा को भरत बहुत भले लगे थे। भरत की विनती सुन लेने और उसके बाद साधु मत, लोकमत, राजनीति तथा शास्त्र की व्यवस्था के अनुसार कार्य करने का परामर्श दिया। भरत धर्म भयंकर तथा तन मन और कर्म से राम को समर्पित थे। श्री राम को ये ज्ञान था

से उन्हें इतना दुलार मिला जो कदाचित विधाता को सहन नहीं हुआ और उसने माता को माध्यम बनाकर स्वामी और सेवक के बीच अंतर डाल दिया।

पर सुंदर बोर्ड लगाया जाता है। तार लगाने के लिए ब्रेकेट में लगे एडजस्टर और स्विचबॉक्स का उपयोग करते हैं। ब्रिज और नट पर तार रखते हैं। ब्रिज ऑन होल्ड के मध्य एक निश्चित स्थान पर रखते हैं। इस प्रकार वायरिंग का ढांचा तैयार होता है। इसके अतिरिक्त इसके अवयवों के नाम इस प्रकार है, बफलिंग, लाइन स्ट्रीप, क्रोल, इनरेस आदि। वायरिंग के ब्रश अर्थात बो को मुख्य पांच भागों में विभाजित किया जाता है। एक हेयर, पॉइंट, क्रॉग और बो स्क्रू। गज का आकार इस प्रकार का होना चाहिए। इसका गहनता से अध्ययन एक टॉर्च द्वारा किया जा चुका है। उनके द्वारा निर्मित बो के मानक आज भी सर्वोत्तम माने जाते हैं। सामान्यतः इसमें चार तार प्रयुक्त होते हैं, किंतु पांच तार युक्त वायलिन का प्रयोग भी प्रचार में आ गया है। प्रोफेसर सुशील कानाधर चौधरी, प्रोफेसर वी पी रानड़े आदि कलाकार पांच तार युक्त वायलिन ही प्रयोग करते हैं। वायलिन में कर्वे लगाने का प्रयोग भी अनेक कलाकारों द्वारा किया गया है। पंडित विजी जो पांच तार युक्त रबदार वायलिन से ही अपना कार्यक्रम प्रस्तुत करते हैं। पाश्चात्य देशों में वायलिन खड़ा रहकर

था उसे नीचे बैठ कर बजाते हैं। इस प्रकार नीचे बैठने से हमें सूट घसी गमक आदि को उत्कृष्ट ढंग से बजाने में सुविधा होती है। इसका मनोवैज्ञानिक कारण यह भी है कि भारतीय परंपरा अनुसार गायन वादन बैठकर ही किया जाता है। दाहिने हाथ से विशेष प्रकार से गज पकड़कर गज का संचालन आवश्यकता अनुसार तारों पर किया जाता है। बाएं हाथ की तर्जनी मध्यमा अनामिका और कनिष्ठा अंगों से विभिन्न सुरों की उत्पत्ति की जाती है। यह उल्लेखनीय है कि वायलिन वाद्य पर गायकी और तंत्रकारी दोनों ही शैलियों को उत्तम प्रकार से प्रस्तुत किया जाता है। वायलिन के तारों को मिलाने की मुख्य चार पद्धतियां प्रचलित है। प्रथम विधि जी डी ए ई अर्थात परे भग, इसे हम मसा परे भी कह सकते हैं, अर्थात इसके तार मंद्र मध्यम मंद्र स्वर्ग मध्य पंचम और चार सप्तक के ऋषभ स्वरों में मिलाकर बजाए जाते हैं। पाश्चात्य देशों में वायलिन इसी प्रकार मिलाकर वादन करते हैं। हमारे यहाँ चित्रपट संगीत में इस पद्धति का प्रयोग किया जाता है। तार मिलाने की दूसरी पद्धति है मंद्र सरज मंद्र पंचम मध्य सरज और मध्य पंचम अर्थात सापो सापो। कर्नाटक संगीत के कलाकार इसी पद्धति का प्रयोग करते हैं। हिंदुस्तानी संगीत में भी कुछ कलाकार इस पद्धति से मिलाकर वादन करते हैं, जैसे डॉक्टर एम राजम और श्री बी के राठौर आदि। तो आइए हम इसी पद्धति से बजाया गया डॉक्टर एम राजम का

विचार मंद्र पंचम मध्य सरस मध्य पंचम और चार सरस के स्वर में मिलाए जाते हैं। इस पद्धति से मिलाकर बजाने वाले प्रमुख कलाकार पंडित निजी योग है। इसी पद्धति में मंद्र पंचम को मंद्र मध्यम में मिलाकर चौथी विधि बनाई गई है, अर्थात इसके साथ म सा प सा भी मिलाकर बजाते हैं। स्वर्गीय केशवराव शिंदे इसी पद्धति से मिलाकर वायलिन वादन किया करते थे। चौथा पता पद्धति से बजाया गया राग श्याम कल्याण अब हम सुनते हैं। कलाकार है पंडित बीज।

0: कि बादल उमड़ घुमड़ रहे हैं मगर बर्फ जमी रहे हैं, वो जो घुटन है उस घुटन को दरवाजे के दंगा में जब तक नहीं लगाया जाए वो आप कह सकते हैं कि नहीं उसको नहीं
1: लगता। उनके हर प्रस्तुति श्रोताओं को शुरू के अलौकिक संसार में

का फिल्म का गाना सुन रहे थे लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की आवाज में मेरे साथ भरत व्यास। इसी के साथ आज का भूले विश्व गीत कार्यक्रम समाप्त हो गया।

संगीतकार की आवाज में आप सुन रहे हैं हर जयपुरी का लिखा ये गाना। संगीतकार थे शंकर जयकिशन।

अधिकार के गुलजार संगीत पर राजेश रोशन। इसी के साथ आज का हम मेरा ये प्यार के कार्यक्रम समाप्त होता है।

माता मच्छर मंदिर का पुनर्विकास, रीवा सिंगा मंदिर का पुनर्निर्माण और अयोध्या में राम मंदिर की स्थापना जैसे ऐतिहासिक कार्य किए गए हैं। आध्यात्मिक पर्यटन करके और आधुनिक तीर्थयात्री सुविधाओं के माध्यम से भक्त

0: दूसरा योजना से लोन मिला, उन्हें आज महसूस होता है कि डेमोक्रेसी के
1: आज हम बात करेंगे दिखा भर छोटी से मत पूछो उसे अगर सच मुझ जितना चाहे फैलाएं और जितना चाहे छोड़ें, चाहे तो हम इस अनंत ब्रह्मांड को नकार दें और चाहे तो इस संपूर्ण ब्रह्मांड की सत्ता को स्वीकार करें। इस दुनिया में ईश्वर

baby

पूजन में थी। आज विवेली में बस इतना ही। आरती श्रीवास्तव को दी अनुमति

parler à un moment aussi.

0: होगी और झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस पार्टी के लोग क्रॉस वोटिंग करेंगे।
1: नई दिल्ली में भारत निर्वाचन आयोग द्वारा आयोजित सोशल मीडिया और सोशल मीडिया सम्मेलन में

अभी आपने बातचीत में बताया पौराणिक समाचार सुना हमारे क्षेत्र के विविध जाति केंद्र से बातचीत ऐसा कुछ 100.8 मेगाहर्ट्ज़ है। श्रोताओं अब जुड़ सकते हैं विविध भारती की राष्ट्रीय सेवा से, यहाँ से प्रसारित हो रहा है कार्यक्रम भारत की।

0: कि बादल उमड़ उमड़ रहे हैं मगर बहुत उम्मीद है। वो जो घुटन है उस घुटन को दरवाजे के संदर्भ में वो आप कह सकते हैं कि
1: उनकी हर प्रस्तुति श्रोताओं को शुरू के अलौकिक संसार में ले जाती है।

0: के कपड़े बहुत ही सादे रहते थे, कभी भी सफेद केस सीधा उन्होंने पहना नहीं, एकदम सीधे सादे व्यक्ति। लेकिन उन्होंने बच्चों के ऊपर कभी भी अपना सिद्धांत लादा नहीं, लेकिन वो सिद्धांत से चलते थे तो हम देखते थे उनको, तो वो चीजें हमने अपने आप से आगे
1: सुनना न भूले। कार्यक्रम उजाले उनकी यादों के

Dividend can be a visit to EDCIO.com.

विश्व बीमारी इतनी ज्यादा क्यों हो रही है।

की डाइट में क्या क्या चीजें शामिल है, उन्हें फास्ट फूड का प्रयोग ज्यादा तो नहीं कर रहे हैं। सुनते हैं ये गाना फिल्म हक, आकाश ओझा की आवाज है, कौशल किशोर के बोल है, विशाल मिश्रा का संगीत है।

की आवाज में कौशल किशोर के बोल के विशाल मिश्रा का संगीत था। और इससे पहले हमने जो गाना सुनवाया था वो था हेलीकॉप्टर लीला फिल्म का पलोमी की आवाज में आनंद के बोल के संगीत था। विश्व भारती पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम चित्रलोक। रात में आसमान चांद सितारों से फूल जाता है, रात हौले हौले धरती पर

तुम कर सकते हो अपने गुरु या अपने रेडियो से ही मंत्र।

सत्तावन कुमारी के गांव सुनावड़े में 1912 में हुआ। उनका बचपन सिंधुदुर्ग जिले के कस्बा कुडाल में बीता, जो कि महाराष्ट्र के कोंकण का जाना माना प्रदेश है। यहाँ वो अपने मामा के पास पढ़ाई लिखाई के हेतु भेजे गए थे। महाराष्ट्र के इस कोंकण प्रदेश में दशावतारी नाटकों का चलन प्राचीन काल से ही है। इसका प्रभाव वसंत देसाई के बाल मानस पर पड़ना लाजमी था। अनेक नाटकों में वे बतौर अभिनेता और गायक भाग लेने लगे थे। 1929 में अगली पढ़ाई के लिए वे कोल्हापुर पहुंचे। वहां पर इनका परिचय हुआ मराठी और हिंदी सिनेमा के वरिष्ठ फिल्मकार छत्रपति शांताराम राजाराम वजपुरे

बीस के आसपास की है, जब वसंत देसाई ने फिल्म सोनी सिंगर में अदाकारी भी की थी। ये एक मूक सब्जी दोस्तों, वसंत देसाई प्रभात फिल्म कंपनी की ही जगह में रहा करते। दिन भर काम करने के बाद रात्रि विश्राम से पहले वो श्रम परिहार हेतु हारमोनियम बजाया करते। एक बार वी शांताराम जी के कानों पर जब ये आवाज पड़ी तो वो चकित हुए और फिर उन्होंने संगीत विभाग में बतौर असिस्टेंट के रूप में वसंत देसाई को भेज दिया। महान संगीतकार गोविंद राव टंडे के संगीत निर्देशन में प्रभात फिल्म कंपनी ने जो पहली बोलती फिल्म बनाई अयोध्या का राजा, उसके वो सहायक संगीत निर्देशक थे। ये फिल्म हिंदी में अयोध्या का राजा नाम से बनी थी। जैसा कि वी शांताराम जी हमेशा किया करते थे, जो भी फिल्म मराठी में बनाते उसका हिंदी संस्करण भी हुआ करता। इस दौर के दिग्गज संगीतकार केशवराव भोले और मास्टर कृष्णराव कुलमरीकर, इनके भी वसंत देसाई सहायक रहे थे। वी शांताराम की बतौर निर्देशक जो पहली फिल्म थी उसका नाम था पड़ोसी और मराठी में जो शेजारी नाम से बनी थी, इसके संगीतकार थे मास्टर कृष्णराव कुलमरीकर। आगे बढ़ते हैं गूंज उठी शहनाई फिल्म के इस प्यारे से गाने।

मुंबई आ गए थे। यहाँ उन्होंने आंधरन चितारा, जो कि एस बी वर्तक लिखित नाटक था, उसका संगीत दिया था। एक और मराठी नाटक छाया को भी उन्होंने संगीत दिया था। वसंत देसाई को बतौर संगीतकार हिंदी फिल्मों में पहला ब्रेक मिला जे वी एच वाडिया की फिल्म शोभम, साल था 1942। उन्हें सही मायनों में ख्याति प्राप्त हुई इसी साल यानी 1942 में।

ने अपनी अलग फिल्म कंपनी बनाई राजकमल स्टूडियो। इसके बैनर तले बनने वाली पहली फिल्म थी शकुंतला। शकुंतला का मुख्य किरदार किया था वी शांताराम की पत्नी जयश्री ने। चंद्रमोहन के दुष्यंत और स्वयं वी शांताराम जी ने प्रियम वत की भूमिका निभाई थी। कुल 13 गाने थे इस फिल्म में और एक गाना फिल्म के संगीतकार वसंत देसाई ने भी गाया था। फिल्म काफी चली और वसंत देसाई को भी ख्याति प्राप्त की। वसंत देसाई का संगीत शास्त्रीय रागों की गरिमा यह होता था और सहज मधुरता का रसीलापन यह होता था। दोस्तों, वसंत देसाई मर्मज्ञ संगीतकार थे। ये एक दुर्भाग्य की बात है कि कमर्शियल फिल्मों में उन्हें सफलता नहीं मिली। वो व्यावहारिक दुनिया से अनभिज्ञ थे, उनकी बारीकियों को वो नहीं समझते थे, इसलिए दुनियावी बातों की तरफ उनका ध्यान कम था। संगीत की बारीकियों की ओर उनका ध्यान मगर बहुत लगा हुआ होता था। उनकी नज़र पहनी थी संगीत की तरफ। हीरे को जैसे जौहरी ही पहचानता है, वरिष्ठ संगीतकार अनिल विश्वास को इस हीरे की पहचान थी। विविध भारती के संगीत चरित्र में जब वे पधारे थे तो आपको भी जरूर याद होगा, वसंत देसाई की सांगीतिक बुद्धि की सराहना करते हुए उन्होंने बताया था कि आशीर्वाद फिल्म का ये जो गाना है जो लता जी ने गाया था, कैसे उन्होंने शुद्ध निषाद पर समाप्त

Amen.

मोड़ कर रहा हो और अचानक सितार का तार टूट जाए या बिजली गुल हो जाए, ऐसा ही एक दिन अकस्मात वसंत देसाई के जीवन में आया और उनकी धड़कन का तार थम गया। दिन था 22 दिसंबर 1975। वसंत देसाई का संगीत अमर है, जिसके ध्वनि प्रकाश में जीवन के लंबे घने अंधेरे रात के भी उजाले से

sweater

को अगर रात का आसरा ना हो, दिन की ख्वाब देखने को भी तरसता है। दोस्तों, रात हसीन होती है जब महबूब का पास हो। हर एक रात को मैं जागता हूँ तेरा ख्वाब देखने के लिए। हसीन रात की

सब रंगों के होने के बाद भी सुनिए, तन्हाई का दामन को छोड़िए,

से जीना ही इश्क है। तमाम मुश्किलों को हंसते हुए बाहों में भरना और आगे बढ़ना।

पहचानी गई है चलने की, क्योंकि हमें जो भी मिला है वो पर्याप्त नहीं, या फिर वो हमारी नहीं, हमें भी कुछ न कुछ चाहिए। जो चाहिए वो अभी हमसे दूर है, जो हमसे दूर है उसे पाने के लिए तो चलना होगा, वो भी सार्थक कदमों से निरंतर चलते रहने वाले को ही जीवन का नीचा फल

भी बिना आलस के अपने लक्ष्य की ओर बिना थके निरंतर चलते रहना चाहिए। शास्त्रों में इसे ही चिरैवेति कहा गया है। जीवन में सफलता का मूल मंत्र है जागरूक होना और आगे बढ़ते रहना, वो भी सही दिशा में। ये छोटे से शब्द स्वर्ण में अथाह गहराई लिए हुए है, जो जीवन और दर्शन का सत्य संकेत देती है। यह शब्द हमारे जीवन से भी जुड़ा है और प्रत्येक जीवन में एक सूर्य स्थापित है और इससे भी गहरा है और इस इच्छा रूपी सूर्य से प्रार्थना है कि जीवन चलता रहे और अपनी रचना स्वयं करे और

रंग बिरंगे हैं बादल, कभी काले कभी सफेद तो कभी नीले हैं। पानी का कोई रंग नहीं फिर भी तो नीला है, इसलिए इससे संबंधित इकोनॉमी भी ब्लू इकोनॉमी कहलाती है। और हमारी इकोनॉमी की जनसंख्या कुछ ऐसी है जैसे ऑरेंज वाइट प्रोडक्ट्स ना, यहाँ तक कि जब हम किसी को देखते हैं तो सबसे पहले रंग देखते हैं, यानी रंगों का हमारे जीवन में बड़ा महत्व है ना। पर आज हम बातें करेंगे ऐसे लोगों की जिनकी त्वचा, आँखें, बाल सभी रंगहीन होते हैं, जिसे एल्बिनिज्म कहा जाता है। और दुनिया एल्बिनिज्म जागरूकता दिवस मना रही है। यह एक जन्म से आनुवंशिक रूप से विरासत में मिलती है, जिसमें बाल, त्वचा और आँखों में पिगमेंटेशन यानी मेलानिन की कमी हो जाती है, जिसकी वजह से सूर्य की रोशनी और तेज प्रकाश के प्रति संवेदनशील हो जाता है। एल्बिनिज्म से पीड़ित लोग जीत नहीं पाते और उन्हें त्वचा कैंसर होने का खतरा रहता है। कुछ हिस्सों में एल्बिनिज्म से ग्रस्त व्यक्ति 30 से 40 वर्ष की आयु में मर जाते हैं, पर जब तक जीते हैं वो उपेक्षित ही जीते हैं। रंग के आधार पर होने वाला ये भेदभाव कई बार रोजमर्रा की जिंदगी में उनके कई तरह से सामने आते हैं। कभी भाषा है तो कभी अमानवीय भाषा का प्रयोग किया जाता है। इन अनुभवों का भावनात्मक और मनोवैज्ञानिक प्रभाव उनके जीवन में लंबे समय तक रह सकता है। वो भी जब इससे ग्रसित लोग अपनी पहचान और

मुझे अपने पिता पर गर्व है। मैं सभी प्रजातियों का जश्न मनाती हूँ। यह दिवस हमें सदा अवसर देता है कि हम एल्विनिज्म से पीड़ित लोगों का आत्मविश्वास बनाने में सहायक बने और उनके लिए समानता

sebelum saya jadi partner sama Mahi.

काल से विकसित रहा, उन्नत रहा, जिसको कपड़े सिलने के लिए सुई धागों के प्रयोग को उन्नत किया गया। जब सुई भी वही थी, धागे भी वही, पर कपड़े सिलने की प्रक्रिया तेज हो गई, जब कपड़े सिलने की मशीन आ गई। जी हाँ, लेकिन अब हम सिलाई मशीन की बात करते रहे हैं। छोटी श्रोताओं, आज है सिलाई मशीन दिवस। इससे और श्रोताओं बता दें सबको, इससे सिलाई मशीन के नतीजे एक पूरे उद्योग को बढ़ावा मिला, बल्कि हमारे पहनने वाले कपड़ों के प्रति हमारे दृष्टिकोण को भी बदल दिया।

लेकिन सदा उन्होंने इसका विज्ञापन नहीं किया और उनके लेखन लिखने के अलावा जश्न का कोई प्रमाण नहीं मिल सका। 1874 में विलियम न्यूटन विल्सन

करने वाला मौजूद है, क्या जो आज भी लंदन में संग्रहालय के पास है। पहली अमेरिकी लॉक स्टेट सिलाई मशीन का आविष्कार किया था। 1842 में जिन अपने यूएसए के पहली सिलाई मशीन का पेटेंट कराया था। 1851 में एक अन्य आविष्कारक इसहाक सिंगर ने एक मशीन का ऐसा मॉडल विकसित किया जो टिकाऊ साबित हुआ और इसी कारण पेटेंट उल्लंघन के मामले में उन्हें कहने की जरूरत नहीं कि

by celebrating

और बाद में

आप आज पानी जन के ऊपर चाहे वो बाहर के केंद्र है एफएम के एक छोटे समान आप सुन रहे हैं इस पर बारह बजे के पास मिनट हुए हैं जुड़ते हैं विविध भारती के राष्ट्रीय प्रसारण सेवा के कार्यक्रमों से और सुनते हैं।

0: उसको मेरा क्या फायदा?
1: देखो जिस शहर में चाहोगे उनकी मदद से उपभोक्ताओं से पहुँच जाओ।
0: तो बता दो से संपर्क कैसे करो?
1: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो, 8700001420।
0: ओह, 8700

people

0: तुम्हारे दिमाग रहे हैं मगर गलत नहीं रहे हैं। वो जो घुटन है उस घुटन को दरबारी के गंधार में जब तक न लाया जाए वो आप कह सकते हैं कि नहीं।
1: इनकी हर प्रस्तुति श्रोताओं को रूह के अलौकिक संसार में ले जाती है। बदमशी पंडित रोनू मजूमदार, संगीत संहिता नई श्रृंखला, शास्त्रीय संगीत, फिल्म संगीत और लोक संगीत में बांसुरी की भूमिका

0: सभी के जीवन से जुड़ी कुछ यह भी।
1: जैसे उनके कपड़े बहुत ही सादे रहते थे, कभी भी सफेद के सिवा उन्होंने पहना नहीं, एकदम सीधे सादे व्यक्ति। लेकिन उन्होंने बच्चों के ऊपर कभी भी अपना सिद्धांत लादा नहीं, लेकिन वो सिद्धांत से चलते थे तो हम देखते थे उनको, तो वो चीजें हमने अपने आप से आ गई।
0: तो सीमा न भूले कार्यक्रम उजाले उनकी यादों के 14

2000 anni.

0: 我本来是想带去那边去，后来就如期南去，在成都西路的西路那边啊，没得事了吧？我就把他的手当去，他们那边，我们这边在那里去给过去上面什么的，我们说他们的阿里那里那个，那个。और इसके अलावा एक और शूटर है जिन्होंने कहा कि बहुत बरसों बाद एसजी बर्मन वाला ये गाना हमें सुनने को मिला है। और इसके अलावा एक शूटर है जिन्होंने लिखा है आई बहार आई बरखा बहार करेंगना फुहार। और इसके अलावा और भी बहुत सारे बारिश के गाने उन्होंने लिखे हुए हैं, बहुत सारे बारिश के गाने। आज वर्षा की बूंदें पूरे दलित भारती को सरबतर करने वाली है, कम से कम गर्मी से थोड़ी राहत मिलेगी।
1: जी आज राजधानी जमशेदपुर का विविध भारती केंद्र है FM 102.8 MHz पर दिन के 1:10 होने वाले हैं। अभी आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी के राज्य केंद्र।

0: में लोग लाभान्वित हो रहे हैं, जैसे कि गरीबों के लिए पीएम आवास योजना और योजना के लाए,
1: तो

से बरामद नहीं होते सागर के आंदोलन की कार्रवाई करते हैं। शादियों का इन ब्रिटिश प्रशासन के लोगों से भय बिल्कुल खत्म हो चुका है।

and take that.

Sai come te, già non desideri.

सड़कों का मोर बन जाना है बारिश, सड़कों का संतूर बन जाना है बारिश, नदियों की गुल्लक भर जाना है बारिश, धरती का खुशबू हो जाना है बारिश, सूखे रेनकोट के भीतर सरबतर हो जाना है बारिश, शहरों का छक छक हो जाना है बारिश, रागों का व्यंजन हो जाना है बारिश, सीने ख्वाब का सुलग उठना है बारिश, पुराने एल्बम पलटना है बारिश, गुलजार पंचम और ब्लैक कॉफी है बारिश, छतरी ठेले से टिका कर बच्चे होना है बारिश। क्या बात है। इसके अलावा कुछ श्रोताओं ने पहचानने की कोशिश की है, मरीन ड्राइव और विक्टोरिया टर्मिनस नजर आते हैं। ये हमारे एक श्रोता ने लिखा है, मरीन ड्राइव नजर आता है, इसके अलावा ओवल मैदान नजर आता है, इसके अलावा राजा भाई टावर नजर आता है, गेटवे ऑफ इंडिया, ताज और मुंबई का समुद्र। बहुत सारे श्रोताओं की बातें मिला के लगभग लगभग तय हो गया कि कौन कौन सी इमारतें हैं और मुंबई के कौन कौन से इलाके जाएंगे नजर आते हैं। ये सिर्फ भी नहीं, ये दो आत्माओं के बीच बहती एक भावना का गीत है जिसकी दवा है बारिश, सौम्यता और कोमलता से भरपूर करने के लिए गीत जीने लिखा है। एक और श्रोता है जो कहते हैं कि आज आपकी इबारत सही साबित हुई, इतनी रात कुछ घंटे पहले बारिश के रिमझिम फुहारों ने हमारे अजमेर शहर की पक्की धरती पर बरखा रानी के आने से सुबह धूम उठे हैं और घर के गार्डन के पेड़ पौधे भी लहरा उठे हैं मानो उन्हें शिरकत से ही होगा। एक और श्रोता है जो इंदौर से है, उनका कहना है कि सब जगह से बरसात की खबरें आ रही हैं पर हमारे इलाके में गर्मी बहुत ज्यादा बढ़ती चली जा रही है। कटक से एक श्रोता है जो लिखते हैं कि हम अक्सर बारिशों में पूरी चले जाते हैं और सुंदर समुद्र तट पर सुकून मिलता है। और इसके अलावा कई शहरों में बारिश हो रही है, इसकी खबर हमें अपने श्रोताओं के कमेंट से मिली है। एक श्रोता ने सुमित्रा नंदन पंत की कविता लिखी है, झम झम मेघ बरसते हैं सावन के, झम झम झम झम गिरती बूंदें तरुओं के क्षण के, झम झम बिजली चमक रही उर्मे घन के, झम झम दिन के कम में सपने जगते मन के, पंख खोल फैले हैं तारों के तल, लंबी लंबी उंगलियां हैं चौड़े कर चल, कड़कड़ पड़ती भारी बारी के उन पर चंचल, तप तप धरती करमुख से जल बूंद उठती है। मुंबई इगतपुरी भंडार दरा जैसे इलाकों में जाते हैं, मुंबई का सबसे महाराष्ट्र का सबसे ऊंचा पर्वत सूबाई है जहाँ से सैकड़ों झरने बहते हैं, वहां जाना बड़ा मजेदार होता है। एक छोटा सा कमेंट है और इसके अलावा एक और छोटा कमेंट लिखे है की बारिश मेरे लिए अफसोस लेकर आएगी क्योंकि मेरा हम सफर छोड़कर चला गया। एक और छोटा है जो लिखते हैं की 1978 में दिल्ली के आसपास एक महीने तक तापमान 40 डिग्री सेंटीग्रेड हुआ था, तब बहुत बुरी हालत हो गई थी। इसके अलावा एक और श्रोता है जो लिखते हैं कि उस कार्यक्रम का पहला अंक आपने पेश किया था और उसमें हमने हिस्सा लिया था। इसके अलावा उनको ये शिकायत है कि भाई इस इबारत में शब्द छापना और उन शब्दों पर आधारित गीत बताना, बस यही इस कार्यक्रम का आपका मकसद है। ये थोड़े नाराज नजर आ रहे हैं

जयपुर का तो विरोधी फिल्म का ये गाना मुझे बहुत पसंद है। ये छोटा कक्का मुझे मजनू सुल्तानपुरी का लिखा ये गीत, पंचम का संगीत

क्या पता चल जाएगा। इसके अलावा एक और छोटा है जो कहते हैं कि सूरत में बारिश जैसा माहौल तो है लेकिन अभी तक बारिश नहीं हुई है। एक और छोटा है जो पंजाब में रहते हैं, वो कहते हैं कि

की जाती है वो कौन तैयार कर रहा है, भाई जो कार्यक्रम

और घट गया इतने मेरे हम लोग मेरे दोस्त से मरे एक और छोटा लिखते हैं कि परसों बारिश हुई थी रात को 11:30 बजे और उसके बाद हम बारिश का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। हमारी शादी वाले दिन भी इतनी बारिश हुई थी कि शादी मंडप में नहीं करने कमरे में करनी पड़ गई थी। इसके अलावा एक और छोटा दिल्ली से लिख रहे हैं कि बड़ी उम्र बड़ी परेशानी है मगर आपने जिस तरह से बारिश के गाने सुनाने से किया आपका शुक्रिया और अब गीत अगर आ रहा है। अच्छा ये बताइए कि जब बारिश आती है तो आपके जहन में पहला गाना कौन सा गुजरता है? आपका वाला बारिश का गाना कौन सा है? फटाफट बताइए।

evil of the

इसलिए मैं पूछूं, उसने अगर सच मुझ जानना है तो पहले आंगन का रास्ता मालूम करे। दुनिया हमारी आंखों में बसी है, हम उसे जितना चाहे फैलाएं और जितना चाहे सिकोड़ लें, चाहे तो हम इस अनंत ब्रह्मांड को नकार दें और चाहे तो इस संपूर्ण ब्रह्मांड की सत्ता को स्वीकार कर लें। इस दुनिया में ईश्वर एक अकेली ऐसी है जिसका दावा बिना प्रमाण के

का प्रमाण नहीं दे सकते जिसमें उसके साथ पूरी चैतन्यता के साथ चलते रह सकते हैं, बहते रह सकते हैं।

danger.

कहने अकादमी की पासिंग आउट परेड में कैडेटों की सराहना की। पहली बार 9 महिला कैडेट का शामिल होना महिला नेतृत्व वाले विकास की दिशा में महत्वपूर्ण कदम। भारत ने खाड़ी क्षेत्र में तेल पोत पर अमरीकी नौसेना के हमले का कड़ा विरोध किया। हमले में 3 भारतीय नागरिकों की मौत हुई थी। वायुसेना का AN-32 विमान असम के जोरहाट स्टेशन पर दुर्घटनाग्रस्त और धर्मशाला में भारत अफगानिस्तान के बीच 3 मैचों की एकदिवसीय श्रृंखला के पहले मैच में बारिश के कारण देरी। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस और स्लोवाकिया की 6 दिन की यात्रा पर रवाना हो गए हैं। श्री मोदी ने प्रस्थान वक्तव्य में कहा कि फ्रांस भारत के लिए रणनीतिक आर्थिक और सांस्कृतिक संबंध और प्रगाढ़ होंगे। प्रधानमंत्री मोदी कल फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों

चरण में श्री मोदी कल

0: भारत और स्लोवाकिया के बीच सहयोग को नई गति मिलेगी। उन्होंने कहा कि दोनों देश सुरक्षा क्षेत्र में संयुक्त उत्पादन और शोध को बढ़ावा देने के इच्छुक हैं। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.news.ir.gov.in और हमारे न्यूज ऑन समाचार ऐप पर भी उपलब्ध है। समाचार में आपका फिर स्वागत है। भारतीय सेना को आज 481 नए युवा अधिकारी मिले हैं। पहली बार 9 महिला कैडेट को भी इसमें शामिल किया गया है। ये महिला नेतृत्व वाले विकास की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। उत्तराखंड स्थित भारतीय सैन्य अकादमी देहरादून में आज 158वीं पासिंग आउट परेड का आयोजन हुआ। इस दौरान युवा कैडेट्स ने अनुशासन, परिश्रम और सैन्य गौरव का अनुकरणीय प्रदर्शन किया।
1: स्थित ऐतिहासिक चित्रकूट भवन के समक्ष आयोजित परेड ग्राउंड में कुल 515 जेंटलमैन और महिला कैडेट ने अंतिम पग पार कर सेना अधिकारी बनने का गौरव प्राप्त किया। इनमें 34 कैडेट मित्र राष्ट्रों से हैं, जो प्रशिक्षण पूरा कर अब अपने अपने देशों की सेनाओं में शामिल होंगे। परेड का निरीक्षण राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने विंग ऑफिसर के रूप में किया। इस अवसर पर राष्ट्रपति ने कहा
2: कि रैपिडली चेंजिंग

0: स्पेशल अवधि के दौरान समग्र उत्कृष्टता के लिए प्रतिष्ठित गॉड ऑफ ऑनर विशाल कुमार को प्रदान किया गया। ऑर्डर ऑफ मेरिट में भी ऑफिसर कैडेट विशाल कुमार प्रथम स्थान पर रहे, श्रेष्ठ राज दूसरे स्थान पर रहे, जबकि तेजस भट्ट ने तीसरा स्थान हासिल किया। साक्षी सिंह, आकाशवाणी समाचार, देहरादून।
1: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज हैदराबाद के डुंडीगल स्थित वायुसेना अकादमी में 217वें बैच के संयुक्त वीक्षांत परेड का निरीक्षण किया। इस अवसर पर उन्होंने नवनियुक्त अधिकारियों से बदलती युद्ध तकनीकों के अनुरूप खुद को तैयार रखने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि आधुनिक
2: अनेक सिस्टम आज के युद्ध में डिप्लॉय है, जिनमें न तो फाइटर का पता चलता है न उसकी मशीनरी और इक्विपमेंट का। तो अब तो ऐसे सिनेरियो भी सामने आ रहे हैं जहां पूरी तरह से अपने एडवर्सरी के ट्रैफिक सिस्टम और सीसीटीवी सब को कंट्रोल कर दिया जा रहा है और आज वारफेयर की डेफिनेशन काफी हद तक बदल चुकी है।
1: समारोह में सुखोई 30 एनसीआई सारंग और सूर्य किरण एरोबेटिक्स टीम द्वारा हवाई प्रदर्शन किया गया। रक्षा मंत्री ने रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन डीआरडीओ को लंबी रूसी की बैलिस्टिक मिसाइल रोधी तथा मध्यम दूरी की पोत रोधी क्षमता का प्रदर्शन करने वाले लगातार 3 सफल परीक्षणों के लिए बधाई दी है। रक्षा मंत्री ने कहा कि इन परीक्षणों

सरकार ने पिछले महीने अवैध प्रवासन और अन्य असामान्य कारणों से हो रहे जनसांख्यिकीय परिवर्तनों का अध्ययन करने तथा उनसे निपटने के उपाय सुझाने के लिए एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया था। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो से बातचीत में हाल ही में अमरीकी नौसेना के हमलों पर कड़ा विरोध जताया है। इन हमलों में 3 भारतीय नाविक मारे गए

आते ही अमेरिकी राजनीति को नई दिल्ली में तलब किया। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने इससे पहले कहा था कि भारतीय चालक दल के सदस्यों को ले जाने वाले व्यापारिक जहाजों पर हमले तुरंत बंद होने चाहिए। समाचार प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव पी के मिश्रा ने कहा है कि आर्थिक रूप से मजबूत, पर्यावरण के अनुकूल, सामाजिक रूप से समावेशी, तकनीक आधारित और चुनौतियों का सामना करने में सक्षम होना चाहिए। दिल्ली में राष्ट्रीय शहरी मामलों के संस्थान के स्वर्ण जयंती समारोह को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि संस्थान ने देश में शहरी विकास को दिशा देने और शहरों की क्षमताओं को मजबूत बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। खुदरा मुद्रास्फीति इस वर्ष मई में बढ़कर 3.93% हो गई है। लगातार पांचवे महीने महंगाई में वृद्धि दर्ज हुई है। अप्रैल में ये 3.48% थी। ग्रामीण क्षेत्रों में मुद्रास्फीति बढ़कर 4.25% हो गई, जबकि शहरी क्षेत्रों में ये 3.53% रही। भारतीय वायुसेना का C-32 विमान आज सुबह असम में दुर्घटनाग्रस्त हो गया। ये हादसा जोरहाट वायुसेना स्टेशन पर हुआ। विमान क्रैश होने के बाद आग लग गई। वायुसेना ने कहा है कि दुर्घटना के कारणों का पता लगाने के लिए जांच समिति गठित की जा रही है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।

को मूल्य सीमा का पालन किया है। फिनलैंड में विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर के साथ बैठक में उन्होंने कहा कि मूल्य सीमा वैश्विक तेल आपूर्ति को बनाए रखने और रूस के मुनाफे को सीमित करने के लिए बनाई गई थी। नीति आयोग और जर्मनी के प्रतिनिधिमंडल के बीच नई दिल्ली में भारत जर्मनी विकास सहयोग को मजबूत करने की

उन्होंने जलवायु परिवर्तन से निपटने और सतत विकास के लिए आपसी सहयोग बढ़ाने पर भी जोर दिया। दुनिया के सबसे अमीर कारोबारी एलन मस्क दुनिया के पहले खरब शानदार शुरुआत के बाद हासिल हुई है। स्पेस एक्स के शेयरों का मूल्यांकन बढ़कर लगभग 2,10,000 करोड़ डॉलर हो गया है। कारोबार के पहले दिन स्पेस एक्स के शेयरों में 19% से अधिक की बढ़ोतरी दर्ज की गई। ऑस्ट्रेलियाई बैडमिंटन ओपन टूर्नामेंट में भारत की दो बार की ओलंपिक पदक विजेता सिंधु को हार का सामना करना पड़ा। सिडनी में जापान की अकाने यामागुची ने सिंधु को पराजित किया। इसके साथ ही प्रतियोगिता में भारत का सफर समाप्त हो गया है। भारत और अफगानिस्तान के बीच 3 मैचों की एक दिवसीय क्रिकेट श्रृंखला के पहले मैच में बारिश के कारण देरी हो रही है। टॉस का समय दोपहर 1 बजे निर्धारित था, लेकिन तेज बारिश के कारण टॉस अभी नहीं हो पाया है। ये मैच हिमाचल के धर्मशाला में खेला जा रहा है। मौसम विभाग ने आज असम और मेघालय में मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। अगले 2-3 दिनों में दक्षिण पश्चिम मानसून के मध्य अरब सागर, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, झारखंड और बिहार के कुछ और हिस्सों में आगे बढ़ने की संभावना है। दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में भी आज रात गरज और तेज हवाओं के साथ वर्षा की संभावना है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 6 दिन की फ्रांस और स्लोवाकिया यात्रा पर रवाना। कहा यात्रा से फ्रांस के साथ आर्थिक और सांस्कृतिक संबंध मजबूत।

पारा में भारत अफगानिस्तान के बीच तीन मैचों की एक दिवसीय श्रृंखला के पहले मैच में बारिश के कारण देरी।

परसेंट मिनट होने वाले हैं। अभी आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं पूनम। रांची के आर्यभट्ट सभागार में आज विकसित भारत जंग लीड डायलॉग 2020

0: ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जिसके माध्यम से देश भर के युवाओं को विकसित भारत के संबंध में अपने विचारों को साझा करने का मौका मिलता है।
1: ये वन ऑफ द प्रोग्राम है जिसमें यूथ का जो व्यू पॉइंट है कि हम आत्मनिर्भर भारत को कैसे और आगे पहुंचा सकते हैं और विकसित भारत 2047 की श्रेणी में कैसे भारत को आगे खड़ा कर सकते हैं, उसमें इनके क्या ओपिनियंस है और ये ग्रास रूट से टियर 2 टियर 3 सिटीज में यूथ के क्या ओपिनियंस है उसको माई भारत नेशनल पोर्टल तक पहुँचाने का

सशक्तिकरण को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आज अपने धर्मपत्नी सुषमा स्वराज साथ झांसी जिले के तमाम उन्होंने सोरेन विधिवत राज्यवासियों से शुभ

जिले के बरवाडी प्रखंड के उका मांड पंचायत स्थित मुरू गांव में आज कृषि विभाग की ओर से खेत जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। किसानों को संस्कृत उर्वरक के उपयोग, जल संरक्षण तथा संभाव

वे राशि है, निगम में जमा नालों की सफाई और फिर

ही अंतर हमारे राज्य से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन।

होता है राजाजीनगर बैंगलोर से अनार प्रसाद, अखिला और सुनील प्रसाद। इसके अलावा टैगोर गार्डन, नई दिल्ली से रविंद्र सिंह, इंद्रजीत और स्प्रीति छावड़ा की चिट्ठी हमें प्राप्त हुई है। पोस्टकार्ड है शुगर फैक्ट्री गेवराई के दिनकर सालवे, गंगा सालवे और श्रेया सालवे की फरमाइश है। और इसके अलावा ये जो गाना है ये हम सुनवा रहे हैं छत्तीसगढ़ से पोषण बंदोर, चंद्र किरण प्रीति और छाया बंदोर की फरमाइश पर। और गौतम नगर

पंडित और भूपेंद्र की आवाजों गुलजार की बोल कभी वो आई सब करें।

गुटबा लड़ाई कुश्ती उपचाराय उषा राय अमित कुमार राय और कपी राय की परवाही जिसकी गाने के लिए ऑक्सीजन पार्क राहुल नगर अमरावती से सिद्धांत गुंडाने अर्चना गुंडाने प्रणय प्रसिद्धि और प्रतिभा साई गुंडाने की परवाइश है। खंडीपीर उदयपुर से जब्बार मोहम्मद अशरफ नजीब गोपाल और रमेश नजानी रुद्री जिला धमतरी से चंद्रकांत सीमा साहू श्रीकांत

0: किताब कभी कभी के जीवन से जुड़ी कुछ यादें,
1: जैसे उनके कपड़े बहुत ही सादे रहते थे, कभी भी सफेद केस सीधा उन्होंने पहना नहीं, एकदम सीधे सादे व्यक्ति, लेकिन उन्होंने बच्चों के ऊपर कभी भी अपना सिद्धांत लादा नहीं, लेकिन वो सिद्धांत से चलते थे तो हम देखते थे उनको, तो वो चीजें हमने अपने आप से आगे

0: कभी भी सफेद केस सीधा उन्होंने पहना नहीं, एकदम सीधे सादे व्यक्ति। लेकिन उन्होंने बच्चों के ऊपर कभी भी अपना सिद्धांत लादा नहीं, लेकिन वो सिद्धांत से चलते थे तो हम देखते थे उनको, तो वो चीजें हमने अपने आप से आगे।
1: सुमन अभुले कार्यक्रम उजाले उनकी यादों के चौदह

نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محمد کا

0: कई बार एरिया में लेकिन फिल्मी कोरियोग्राफी अलग अलग होती है, ट्रिक्स अलग होती है,
1: वो तो आप जानते नहीं थे।
0: आपने इसको कैसे अपने आप को मैनेज किया?
1: फिल्म में जो मुझे मिली पहली फिल्म जो थी, छोटा सा कोरियोग्राफी का सेक्शन था, लगा हमें वॉइस का सेक्शन था और मैं बहुत नर्वस था।
0: बड़ी फिल्म थी, बड़ी महत्वाकांक्षी फिल्म थी आमिर की और आशुतोष की भी, और फिर हिस्ट्री भी बनी।
1: तब मैंने ये कहा था कि ये हिस्ट्री बनने वाली है, नॉर्मल फिल्म बन रही है।
0: लेकिन उसके बाद वो फिल्म रिलीज हुई होगी और जब उससे टेरेंस का नाम जोड़ा तो एक खुशी जो आपको मिलनी थी वो तो खैर जाहिर सी बात है, उसका तो हम अंदाजा लगा सकते हैं, लेकिन कमर्शियली आपको फिर उससे कोई फायदे हुए होंगे?
1: एक्चुअली मैं कहूँगा कि मेरा बहुत, मैंने उस फिल्म में बहुत छोटा काम किया था लेकिन बहुत इज्जत मिली, तो ये भी ऊपर वाले की मेहरबानी है कि लोग मेरा नाम जोड़ने लगे। मेरे बड़े हस्ती होते जैसे सरोज खान जी ने कोरियोग्राफ किया था, राजीव खान ने कोरियोग्राफ किया था, रघुवीर मौसी ने, उनका बहुत ज़्यादा काम करता था, मेरा बहुत छोटा, लेकिन कोरियोग्राफर के नाम में सारे नाम जोड़े हैं। मेरी कोई औकात नहीं होती, मैं तो अभी अभी पैदा भी नहीं हुआ वैसा वाला कोरियोग्राफर, लेकिन सारे कोरियोग्राफर के नाम साथ में जुड़ गया तो वो लोगों के नजर में, अरे हाँ ये बड़े लोगों के साथ में जुड़ गया, ये मेरी खुशनसीबी थी लेकिन ये सत्य नहीं है। और ये मैं इसका खुलासा करना चाहता, ये मेरा सत्य है कि मैंने कोई बड़ा काम नहीं किया, लगा कोई बड़ा गाना नहीं किया, छोटा सा एक पोर्शन था वही किया। लोगों का लाया कि मैंने बड़े नाम बड़े फिल्म के साथ जुड़ गया हूँ, तो अगर आशुतोष जी ने विश्वास किया है तो बच्चे कुछ ना कुछ होगा। तो मुझे सेकेंड फिल्म मिल गई जो जिंगार बीच थी, वो भी

बर्मन के हर एक गाने में आज भी वही कशिश है, वही ताजगी है जब वो उनकी विचार से निकले होंगे। तो उन गानों पर

0: good time that I had here. It was, like, you know, एक वेरिएशन था और आदि वर्मन को लेकर और उसके संगीत को समझ कर वो आज की तारीख में वैसा वाला संगीत बना रहे और बहुत ही अच्छे से गाने बने उसकी भी कैंपियस है लेकिन एक नया फेस देना था एक नया अंदाज देना था आज की पीढ़ी के साथ जो कनेक्ट कर पाए तो वो इंस्ट्रक्शन भी सुझाव ने दिया था कि मुझे थोड़ा पुराना वाला फ्लेवर चाहिए और थोड़ा
1: उसमें डांस में जो क्या किया मैं वही जाना चाहता हूँ
0: तो डांस में इट वॉज नॉट सच अ डांस ओरिएंटेड सॉन्ग इट वॉज मोर अबाउट इट वॉज अ रॉक बैंड तो वो बैंड में फिल्म में जो लोग सब संगीतकार हैं म्यूजिशियन हैं तो उनको नाचना नहीं था लेकिन जिस तरीके से उनको फिल्माया गया था

0: start is up to now, when we have done. I didn't have much of dancing to do, but picturization had to be done well. As a choreographer, sometimes हर गाना आपको आर्टिस्ट को निकालना नहीं
1: चाहिए।
0: सिचुएशन के हिसाब से आपको अच्छा गाना चाहिए ताकि वो अच्छा लगे, देखने में फील करे और वो कैरेक्टर से बाहर ना जाए। Only dream sequence जब Riya Sen और Shyam Munshi तो वो एक्टर भी थे, उनका एक गाना था, तो Shyam ही गाया था।

बाहर वाले ना, क्योंकि यहाँ वो तीसरी फिल्म है ना, जो अभिषेक बच्चन और आंद्रा माली के साथ हूँ और जिसके डायरेक्टर कौन थे, वो फिल्म ऐसे आई कि आंद्रा माली मेरी शोर दिखती स्टेज है, मुझे अब भी

फिल्मों में काम करता था, लेकिन मुझे स्टेज का बहुत बड़ा लगाव था और मुझे स्टेज पर परफॉर्म करना ज्यादा पसंद था। तो मैं आसान ही चीजें स्टेज पर ट्राई करता था, जो मतलब एकदम लोग बोलते थे बस कुछ भी जो दिमाग में आया करता था, लेकिन उसका कुछ चीजों सर या पैर नहीं था, बस एक आइडिया एक कॉन्सेप्ट और मैं वो स्टेज पे दिखाता था। तो उसको वो स्टाइल बहुत पसंद आया उनका भाई को, और उन्हें बोला कि मुझे आपका ये स्टाइल बहुत पसंद है और मैं ये सीखना चाहती और मैं इसको अपनी फिल्म में ले जाना चाहती। और एक फिल्म लिखी है कि मैंने लिखी है और रामू वर्मा ने लिखी है, उसका फिल्म बनाने ना चाहते कोरियोग्राफी की राइट पर ये फिल्म है। और फिर मैंने धीरे धीरे समझा कि ये फिल्म तो ऑलमोस्ट मेरे से मिलती जुलती है, बिकॉज इट वॉज अ कोरियोग्राफर हु वॉज नॉट

0: सोचता है
1: नहीं।
0: तो उसने वो जो मेरा जो चाय चलन है जिस तरीके से मैं बैठता था वो मुझे नोटिस करने लगी और वो हर एक चीज समझने लगी कि मैं कैसे सोच रहा हूँ, कैसे बात कर रहा हूँ, कैसे डांस करता हूँ, कैसे समझाता हूँ। तो वो सब चीज़ें उसने मुझे स्टडी कर दिया और वही चीज़ वो अपने से मैं नाच में करवाना था। तो जो कंटेम्प्रेरी डांस का उसने तड़का दिया उस गाने में, तो क्रिटिकली मुझे बहुत सारे लोगों ने पूछा कि ये फिल्म बहुत अच्छी है, तुमने कुछ और ही कर दिया, कुछ अलग ही दिख रहा है डांस में, पता नहीं क्या कुछ एक अलग नज़ारा दिख रहा है। तो वो मुझे बहुत अच्छा लगा कि क्रिएटिवली मैंने कुछ अलग सोचा, मैंने कि जो लोग करते हैं वही करूँगा कुछ अलग अलग अलग। तो उसके पीछे मैंने क्रिएटिवली कुछ अलग ही डांस करवाया और वो बहुत बेहतर आया और लोगों को पसंद आया। तो इन माई क्रिएटिव जर्नी अलग

0: बात कही कि अंतरा माली ने आपको एक स्टेज शो में देखा और फिर और आपने ये बताया कि स्टेज शो में बड़े अतरंगी से डांस आप करते थे, तो गाने भी अतरंगी सुनते हो इस तरह के, क्योंकि अतरंगी गानों के लिए कुछ खास नाम भी है हमारे, जैसे किशोर कुमार साहब है, अमित कुमार जी के भी गाने रहे हैं, तो आपके अतरंगी गाने किस तरह के होते थे?
1: Well, अगर हिंदी गाने की यूज नहीं करते थे बिकॉज वी टू यूज नॉन कॉपीराइटेड म्यूजिक, क्योंकि हमारे लाइसेंस नहीं था, तो हम लोग म्यूजिक क्रिएट करते थे, लेकिन इन्फ्लुएंसेस बहुत सारे थे जो

गजल की बात की, लिरिक्स की बात की, आपने बात की कि कहीं कोरियोग्राफर से बनते हैं। सवाल मेरे मन में उठा था कि आपने कोई फॉर्मल ट्रेनिंग नहीं ली, नहीं आपने कोरियोग्राफी की अगर बात की जाए तो फिल्मों में ऐसे कोई बहुत नहीं की या किसी को असिस्ट भी नहीं किया गया, बावजूद इसके आपको जो कोरियोग्राफी के लिए जो एक खास चीज होती है जिसको क्रिएटिविटी कहते हैं, क्योंकि अगर एक डांस देख के डांस कर लेना एक अलग, लेकिन एक डांस को खुद क्रिएट करना है, एक लिरिक्स को डांस में कन्वर्ट करना है, वो एक अलग चीज है जो कहीं ना कहीं गॉड गिफ्ट रखते हैं। उसको आपने महसूस कैसे किया, आपने इसको कन्वर्ट करने का जो प्रोसीजर होता है, देखिए गॉड गिफ्ट है लेकिन वो गिफ्ट आप बाहर कैसे निकाल कर आपने की जो प्रोसीजर है वो कैसे सीखी, उसको कैसे समझा आपने? तो कोरियोग्राफी ना दो तरीके से होती है, आप गाने को सुनते हो और गाना आपका हावी हो जाता है और आपका शरीर उस गाने को सुनकर उसके गाने के ध्वनि को सुनकर आपका अंग विनोद डांस कर जाता है, वो एक तरीका है। लेकिन मैं दूसरा तरीका ट्राई करता हूँ, मैं म्यूजिक लगा कर नहीं, मैं जो थॉट है जो सोच है उसको लेकर चलता हूँ और मेरे ऐसे चीज को बोलता हूँ कि मुझे पता नहीं कि मैं क्या करने वाला हूँ, लेकिन मुझे गौर से देखना और याद रखना और मुझसे कॉपी करते रहना, क्योंकि मुझे आपको अगर बोलोगे कि अभी वही चीज़ वापस कर तो मुझे याद नहीं रहेगा, लेकिन जो भी निकल रहा है मेरे अंदर से उस पर थोड़ा आप ध्यान देना, क्योंकि कुछ चीज़ें अच्छी हैं कुछ चीज़ें नहीं, सब इतना ध्यान में था कि कैमरा भी लगा सकते हो आप रिकॉर्ड कर सकते हो। उस जमाने में मैं अपने असिस्टेंट पर ज़्यादा निर्भर करता था, तो मैं स्टूडियो में जाता था और मेरे अंदर से जो भी निकल रहा है वो मैं मैनेज करता था विदाउट म्यूजिक का। और फिर मैं सोचा कि ये जो मैं कर रहा हूँ ये कौन सा म्यूजिक का एक्सपीरियंस है, फिर मैं म्यूजिक को सुनता था क्योंकि ये म्यूजिक मुझे इंस्पिरेशन दे रहा है। ऑलवेज हाफ था, पहले मैं आगे बढ़ता था अपना कुछ करता था ताकि वो हावी ना हो जाए मुझ पर, और फिर मैं म्यूजिक को सुनता था और फिर उसको कंबाइन करता था। फिर मैं कभी कभी जो अल्फाज जो हैं अगर वो अच्छे हैं तो वो कभी कभी यू नो इन्फ्लुएंस करते हैं हमारी कोरियोग्राफी में। बहुत इंपॉर्टेंट है कि एक चीज़ ये बहुत इंपॉर्टेंट है स्पेशली क्रिएटिव लोगों में कि आप एक ही म्यूजिक को सुन के 10 चीज़ें कर सकते हैं, लेकिन अभी आपको डिसाइड करना है कि कौन सा सबसे बेस्ट रहेगा, इसके लिए आपको एक इंटेलिजेंस चाहिए, इसके लिए आपको एक समझ चाहिए, वो समझ होता है इस कॉलम आर्टिस्टिक इंटेलिजेंस, क्योंकि आप बहुत सारे ऑप्शन हैं, आप बहुत सारे रूप में इसको दिखा सकते हैं, लेकिन कौन सा एकदम सही होगा, एकदम होगा, एकदम सक्षम होगा, सूक्ष्म भी होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बहुत चीज़ें आप कर सकते हैं, बहुत लिटरल भी कर सकते हैं, मतलब जो आप लफ्ज बोला है वही को आप दिखा रहे हो, तो फिर वो ना जैसे आप डिफरेंट नंबर डांस हो जाते हो वो वाला नहीं होना चाहिए कि एकदम लिटरल आप खुद ट्रांसलेट कर रहे हो, उसमें कोई क्रिएटिविटी नहीं है। लेकिन क्या आप उसको एक मेटाफोरिक यू नो एक मेटाफोरिक रूप में अगर दे सकते हैं तो दिन बिकम वेरी इंटरेस्टिंग। तो यू हैव टू यूज योर आर्टिस्टिक सेंसिबिलिटी टू अंडरस्टैंड कि कैसे आप उसी एक म्यूजिक या गाने या शब्द को सही चीज़ों को जोड़कर उसको बहुत ब्यूटिफुली कन्वे कर सकते हो, और उसके लिए चाहिए आपको कॉम्पोजिशन टेक्निक। और कोरियोग्राफी कॉम्पोजिशन इज एन आर्ट, मतलब जो गाना जो आप डांस कर रहे हैं उसके उतार चढ़ाव क्या है, अगर आपकी बॉडी झट से एक स्ट्रांग मूवमेंट दे रही है उसके बाद आप बिल्कुल स्ट्रांग मूवमेंट मत कीजिए, एक थोड़ा सॉफ्ट मूवमेंट कीजिए ताकि वो एक लहर की तरह ऊपर नीचे करे। अगर आप एक बहुत बड़ा वाला मूवमेंट कर रहे हैं उसके बाद एक छोटा वाला मूवमेंट कीजिए, अगर आप बहुत ही मतलब अगर एक बार मतलब आठ काउंट में सामने होके कैमरा के सामने करें तो कई बार यू नो थोड़ा मुड़ के आप थोड़ा डालिए ताकि वो विजुअल थोड़ा भजे। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द डायनामिक्स ऑफ विजुअल एंड हाउ यू यूजिंग स्पेस। तो स्पेस है आप किस तरीके से यूज करते हैं, आपका आंग किस डिरेक्शन में जा रहा है, और वो क्या जो आप कर रहे हो वो मैच कर रहा है म्यूजिक और शब्दों के साथ, ये एक अलग साइंस है, ये एक अलग विधि है जानना कि कैसे करते हैं। और फिर अगर आता कॉम्पिटिशन ये भट से नहीं आता, यू हैव टू वर्क ऑन इट, और फिर जाके आप बहुत ही जब प्रैक्टिस करते हैं और बहुत दिमाग लगाते हैं कई बार अंदर से आ जाता है और एक सेकंड में वो सही हो जाता है, कभी कभी आपको बहुत कुछ करना पड़ता है और फिर उसको यू नो फनल करना पड़ता है, इसको एक एक्सेस में मतलब इसको रिड्यूस करना पड़ता है, छानना पड़ता है, छानना पड़ता है, उसको छानना पड़ता है ताकि वो सही मात्रा में

0: हमारे जो श्रोता है वो इस बात को समझे कि एक कोरियोग्राफी होती है। बहरहाल आगे बढ़ते हैं, आपकी फिर अगली फिल्म कौन सी रही, जैसे कि आपने बताया 10 फिल्में रही हैं।
1: वहाँ कोई दूसरी कुछ सर्जरी करने आई, मुझे ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं था क्योंकि मुझे 2009 में ही टीवी से इन्विटेशन आया था कोरियोग्राफर और जो फिल्म, और मुझे ये जो इन्विटेशन आया अच्छा लगा क्योंकि यहाँ पर मैं कोई जज नहीं करने वाला था लेकिन मैं कोरियोग्राफी करने वाला था, और मुझे मौका चाहिए था कि मैं ऐसे ऐसे डांसर के साथ काम करूँ जो आप एग्जाम न करें और मुझसे कोई सवाल ना करे और जो मैं क्रिएटिवली दिखाना चाहता हूँ वो मौका मिले, क्योंकि जब फिल्मों में जब आप काम करते हो तो
0: लिमिटेशन
1: लिमिटेशन होती है, आर्टिस्ट कितना कर सकता है, दो करके शूट करना पड़ता है। तीसरी बात ये होती है कि गाने का अगर वो किरदार ऐसा है कि वो ज़्यादा नहीं नाचता तो तुम जबरदस्ती को नहीं कर सकते, और यह सिचुएशन में आप नहीं कर सकते हो तो आप बहुत सी चीजें से बंद जाते हो। टेलीविजन शो में आपको आप डांस दिखा रहे सिर्फ डांस, लेकिन कहानियाँ भी दिखानी है क्योंकि कहानी के माध्यम से अगर सिर्फ डांस हो तो मजा नहीं आता, लेकिन अगर मुझे एक नैरेटिव हो, इसमें कहानी हो, इसमें एक इमोशन छिपा हो तो वो बहुत लोगों को पसंद आने लगते हैं। तो जब मुझे ये मौका मिला मैं बहुत खुश हो गया। बहुत कोरियोग्राफर्स ने डांस में आपको रिजेक्ट किया था, इनफैक्ट हम पहली चॉइस नहीं थे फॉर एज कोरियोग्राफर, बड़े बड़े लोगों को लिया गया था पहले, और नाम नहीं बनाता होगा, लेकिन हमसे बहुत सीनियर जो लोग थे उनको अप्रोच किया था लेकिन उन्होंने ना कर दिया क्योंकि उनको कोरियोग्राफ करना नहीं था, क्योंकि वो फिल्मों में कोरियोग्राफ अच्छा करते हैं लेकिन स्टेज को कोरियोग्राफ करना मतलब स्टूडेंट्स को एक झटके में विदाउट कट वो एक अलग ही विधि है।
0: फिर मैं उस पूरी जो टीवी की दुनिया है उसमें

में बातचीत के दौरान कहा कि फिल्मों में जो कोरियोग्राफी होती है, जो डांस होता है, वो कट कट करके होता है। मान लीजिए कि हम एक एक्टर को जानते हैं कि भाई उसको डांस आता नहीं, लेकिन वो बराबर 7 मिनट तक या 6 मिनट तक पर्दे पर डांस करता हुआ नजर आता है। आप थोड़ा सा समझाएंगे कि एक्चुअली जो फिल्मी कोरियोग्राफी होती है, फिल्मी डांस जब शूट होता है तो उसका जो प्रोसीजर होता है, उसकी जो टेक्निक होती है, वो किस तरह से कट कट करके जाती है। तो देख लीजिए, समझ लीजिए, आपने डांस सुना है, गाने में बीट होती है, एक तार होता है, एक दो तीन चार, ओके एक दो तीन चार, वो बीट होता है, रिदम होता है, तार होता है। जब हम लोग सेट करते हैं तो हम हर बीट को कोरियोग्राफ करना पड़ता है, चाहे वो एकदम शुरू में अगर सिर्फ फ्लूट बजाए तो वो भी हमारे लिए कोरियोग्राफी होनी चाहिए। क्या हो रहा है उस पर, वो भी सेट करना पड़ता है। तो जब हम शूट करते हैं तो हम पिक्चराइज करते हैं कि ये चार बीट से हम ये वाला सेट करेंगे। अब ये है कि चाहे आप एक अच्छा डांस करें या ना करें, लेकिन जो फिल्म का जो माध्यम है उसमें हम बहुत ग्लैमराइज करना चाहते हैं। तो हम क्या करते हैं कि एक एंगल से चार काउंट लिया, दूसरे एंगल से क्लोजअप मारा, वो भी चीज फिर तीसरे एंगल से मूविंग ट्रॉली शॉट लगा दिया। तो जनरली क्या होता है, आर्टिस्ट को सॉलियत मिल जाती है या कन्वीनियंस हो जाता है कि वो सिर्फ चार स्टेप करें या आठ स्टेप करें और फिर उसके बाद में रुक जाते हैं, क्योंकि उनको पता है इसके बाद कट लगने वाला है, क्योंकि दूसरा कट आएगा। मान लो कि आपने 16

0: गया हमारे जो सफा चली आ रही है 20 साल से कि हम बहुत ही हमारे साथ खराब है हमको सब कुछ ना अच्छा दो काउंट ऐसा आ गया जैसे पूरा शॉट दिया है डांस का लेकिन ये नहीं जो है अभी थोड़ा कट करके ये लगाइए आप कट करके वो एंगल लगाइए लेकिन फिर आगे तक अगर अच्छा आर्टिस्ट है जैसे मान लीजिए हो गए ऋतिक हो गए गोविंद हो उनको तो कट करने की जरूरत नहीं है वो इतना अच्छी तरह से परफॉर्म कर रहे हैं कि वो एक एंगल से भी बनता है वो शॉट जरूरी नहीं लेकिन भाई आज की पीढ़ी में सब पॉइंट पॉइंट पॉइंट पॉइंट पॉइंट वो एडिटर ज़्यादा मारता है क्योंकि जबरदस्ती के पट पट पट और फिर वो झाने जो आते हैं सॉरी बड़े लैंग्वेज लेकिन वो ना वो एकदम ह्यूमन करके झाने लगता है वो ग्लो ड्रायर अननेसेसरी ग्लो ड्रायर हर गाना उससे इनको सुनने में लगता है अच्छा काम भी हो रहा है इंडस्ट्री में ऐसा भी लेकिन मैं यही जरूर कहूँगा कि एक मोनोटोनस चीज़ें होनी लगती है अगर वो एक चीज़ अच्छी भी है तो वही चीज़ को अच्छी चीज़ को एक गाने में आप देख सकते हैं कि वो सेम टू सेम वही फॉर्मेट वही चीज़ दिख रही है इनोवेशन नहीं मिलता अगर एक चीज सक्सेस हो जाती है हमारी इंडस्ट्री में तो फिर सभी लोग बोलते हैं अच्छा वैसा ही गाना करो और इसको भी डुप्लीकेट बनाओ सिर्फ गाने की लव और आर्टिस्ट बदल रहे हैं लेकिन ट्रीटमेंट गलत हो गया तो वही ट्रीटमेंट है कि गाने को फट फट काटो फिर यहाँ ड्रामे करो फिर क्लोज अप लो फिर स्टडी कैम लगाओ लाइक आई फील मास्टर जी जैसे गणेश मास्टर जी और दूसरे हैं मास्टर जी तो यू नो अभी सिंगर में नहीं सरोज जी उनका जो स्टाइल ऑफ ट्रीटमेंट था लंबे लंबे का आई थिंक दैट वो सिनेमा वापस आ जाती है एंड कुछ कोरियोग्राफर्स कर रहे हैं कुछ हद तक और आर्टिस्ट को भी पता चल गया है कि नाउ वी शुड ऑल्सो नॉट कीप सच शॉट तो फिल्म की बात करें तो बहुत लोग जो अच्छे डांसर नहीं हैं उनको भी हम अच्छा सिखा सकते हैं क्योंकि अगर आपकी बॉडी लैंग्वेज गलत है ओके तो मैं सिर्फ आपका क्लोज अप ले लूँगा मैं आपको बोलूँगा कि आप आंखों से खेल लीजिए आपकी बॉडी लैंग्वेज एकदम सही नहीं है आप बहुत ही और लग रही हैं कुछ कुछ हैं एक्ट्रेस जिनको डांस नहीं आता और वो मॉडल्स हैं लंबी हैं उन्हें कभी सीखा नहीं लेकिन अभी उनको करना पड़ रहा है तो वो ज़बरदस्ती करते हैं वो सीख लेते हैं मुझे लगता है वो बहुत स्ट्रेस में डांस कर रहे हैं वो मजे नहीं ले कुछ कुछ हैं ज़्यादा नहीं है आजकल के सभी जो पीढ़ी के जो आर्टिस्ट हैं वो सब नाफिक के आते हैं और कुछ दो तीन ऐसे रहे हैं रियल लाइफ में भी तो मुझे लगा कि उनका फुल बॉडी शॉट नहीं लूँगा और अगर लूँगा तो वाइड लूँगा डबल के डांस कर सके वो जो गलतियाँ हैं छिप जाए और उनको सिर्फ चार या पाँच या आठ काउंट का डांस सिखा के बंद करा दूँगा क्योंकि उनकी एनर्जी कम होने लगती है या वो याद करने लगते हैं कि मैं क्या है और वो चेहरे से दिखने लगता है इसलिए हम लोग कट कट करके लेते हैं लेकिन ऑडियंस को पता नहीं चलता है कि ये कट हुआ है उनको लगता है कि ये लगातार निरंतर रूप से चला रहा है
1: तो दोस्तों आप समझ गए ये जो कट कट की दुनिया है किस तरह से आपके सामने बट बट के आया ये एक चीज बहुत टेक्निकल थी ध्यान से जो छोटा इस प्रोग्राम को सुन रहे होंगे जाहिर सी बात है जिनका डांस से बहुत लगाव होगा उन्होंने बड़े ध्यान से इसे सुना होगा अब आगे बढ़ते हैं और आपकी उस दुनिया में आते हैं जो आजकल आपको घेरे हुए है ये कहेंगे कि जिस दुनिया में आजकल आप मदमस्त है टीवी की दुनिया ये टीवी की दुनिया में अब जहाँ तक मुझे ध्यान आता है कि मैं भी काफी समय से देख रहा हूँ मुझे लगता है जब से शुरू हुई है ये दुनिया रियलिटी शोज का जमाना जब से शुरू हुआ है चाहे वो डांसिंग शोज हो या सिंगिंग शोज हो गाने तो विविध भारती के ही बसते हैं बहुत सारे गाने एक जो अभी जिसके एटलीस्ट 10 मिलियन 20 मिलियन व्यूज हो चुके हैं वो गाना भी पुराना गाना है जो मैंने नौरा के साथ किया वो ज्यादा हिट हुआ है बहरहाल मतलब अभी जो हम बात कर रहे हैं

0: उसकी कि जिनकी बॉडी लैंग्वेज में डांस नहीं होता है लेकिन फेस पे आंखों से आपकी नजर में कौन सी हीरोइन बहुत अच्छी डांसर?
1: आपके जमाने तो बहुत अच्छे हैं, मैं जरूर कहूंगा कि माधुरी जी बहुत अच्छा करती है। आजकल की तारीख में आज की जो नई पीढ़ी है सभी अच्छा डांस करते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि वो बहुत मेहनत करते हैं, वो इंजॉय नहीं करते हैं। जहाँ देखिए माधुरी और गोविंदा जी ना, जब वो कोरियोग्राफी सीखते भी है ना, तो वो अपना एक एलिमेंट लेके आते हैं, उनको खुद को इतनी खुशी महसूस हो रही है और वो खुशी बिखरी रखती है। दूसरे लोगों में लगता है कि नहीं, हमें इसको परफेक्ट बनाना है, तो परफेक्शन के चक्कर में वो भूल जाते हैं कि इनको एंजॉय ही करना है।
0: परफेक्शन देखते हैं वो रोबोट हो जाता है।
1: हाँ, तो वो मेरे बाल ऐसे हैं, अगर मेरी बॉडी में कुछ ठीक है, अगर ये पॉस्चर सही है, अगर मैं सुंदर लग रही हूँ या मैं सुंदर लग रहा हूँ या मेरा एटीट्यूड सही है, मेरे कपड़े अच्छे लग रहे हैं, ऑल्सो देयर टू ट्रैक्ट इन दैट यू नो की परफेक्शन। तो कहीं ना कहीं वी डोंट रियलाइज की एक मेटाफिजिकल चीज होती है एनर्जी एंड वाइब आकार। ओके, एक रूप फिजिकल रूप है, लेकिन एक चीज है एनर्जी और वाइब, वो फिजिकल नहीं होती, वो मेटाफिजिकल होती है, वो लोग भाव से लेते हैं। तो लोग जो आप देखते हैं, हाँ रूप तो देख लेते हैं, लेकिन इसकी जो वाइब है ना वो नहीं आ रही,
0: आत्मा नहीं पकड़
1: सुंदर है लेकिन मतलब सब ठीक है, सब अच्छा लग रहा है, लेकिन फिर भी वो वाइब क्योंकि वो इंसान ने उसको अपना नहीं बनाया। एंड दैट इज वन थिंग दैट माधुरी डू एंड इवन गोविंदा जी, एंड दैट्स द वन थिंग दैट आई रियली एडमायर।

0: which is very good. So that's very good. So it's nice to see the young guys. It's just that only this करके इसमें बहुत बड़ा फोक हो जाता है. सही है. दूसरे एक जमाने हुआ करते अगर आप पूछा जाते कि कौन अच्छे डांसर नहीं हुआ करते तो कैसे लोगों को छिपाते थे तो बिगेस्ट एग्जांपल ऑफ नॉट बीइंग अ गुड डांसर इज मीना कुमारी जी. वो ना लेकिन उनकी फिल्मों में बाकी जान उनको नाचना है तो कई गानों में ना उनकी एक डबल हुआ करते थे. कृष्णा अय्यर जी ने बहुत सारे टाइम उनका डबल डबल के रूप में घूंघट में अगर वो गाना दिखा है वो कल्पना अय्यर जी ने किया है. मीना कुमारी का एक खास बात कि जो ये शरीर नहीं कर पाता था अगर आप शॉर्ट्स देखेंगे ना तो वो सिर्फ आंखों से खेल रही है और वो आंखों से बहुत कुछ कह जाती है. उनको सिर्फ इतने शोल्डर से और ये आंखों को देखने में और वो फीलिंग के साथ जो कर रही है ना उसी में पता है उसको ज्यादा करने की जरूरत भी नहीं है. तो उन्होंने समझ लिया कि ये मेरी शॉर्ट कम है ये मेरे तरीका है तो वह करी हाँ बहुत नचवाया है लेकिन इसमें की इन कंपैरिजन वैजयंती माला इज नेक्स्ट लेवल. हिमालय जी इज नेक्स्ट लेवल और ये साउथ की एक्ट्रेस है ना उनकी संस्कृति में है डांस वाले डांस सीखो और पेरेंट्स जबरदस्ती लड़कियों को और लड़के को सिखाते थे. कमल हसन जी सबसे बढ़िया डांसर थे उन्होंने भी भरतनाट्यम सीखा था. तो जो साउथ के जो हीरोज या हीरोइन थे उनको ऑलरेडी वो सीख कर आया करते थे तो उनको समझती. तो द बेस्ट एग्जाम्पल इज आई वुड से इज वैजयंती माला जी श्रीदेवी जी हेमा मालिनी जी वीणा मालिनी नॉट इन द साउथ बट शी वाज आई वुड से ये चार ऐसे कलाकार थे.
1: ये कौन नाम है पढ़ने के बाद
0: वो उनकी बहन थी ना वैजयंती माला की बहन थी ना वो सब. तो दे वर बोथ क्लासिकली ट्रेन साउथ की तो दे वर वेरी क्लासिकली ट्रेन और वो क्या कहते थे ना सर ये अभी शायद लोगों को पता नहीं लेकिन वो जब साउथ से आई थी तो वैजयंती माला अपने कोरियोग्राफर को देखा नहीं मैं डांस कराऊंगी तो इनको पता. सो इट वॉज वेरी क्लियर कि मैं मेरी पहचान डांस है तो

study of these.

0: सब भूल जाते हैं अपनी कला। क्या लोग कितने निकलने रहते हैं तो सौ इल्जाम दिए जाते हैं हालातों को। यूं होता तो ऐसा ना होता, ये ना होता तो ऐसा होता। पर क्या इन कमियों को गिनकर कभी गुजरा वक्त और बिगड़े हालात सुधरते हैं भला? लेकिन करें क्या, मन तो यही सोचता रहता है कि शायद यूं होता तो यूं ना होता।
1: हारमोनियम बजाया, तबला बजाया, ये भी बजाया और वो भी बजाया, मगर अफसोस
2: गाना न आया, बजाना न आया।

मुझे बाप रे उठता भी तो क्यों उठता। हमें एक सुर भी दिलाना न

बातों को दोष देकर कुछ आराम मिलता है, तब समझ आता है कि वह सारा कसूर है दिल का। ये बदमाश न जाने क्या क्या मन में घोलता रहता है और मन इतनी तरफ पर नाचता रहता है। लाख कोशिशें की जाती हैं कि दिल और दिमाग की दुश्मनी करवा दी जाए, न ये दिल बहकाएगा और ना ही डोलेगा मन, वरना इस दिल का क्या भरोसा, पता नहीं कब कहाँ कौन सी मुसीबत खड़ी कर दे।

0: सुन रहे हैं दिल और दिमाग का सुल्तान।
1: लो जी, लाश संभालो पर मन को तो करनी है अपनी ही। अब देखिए ना, आ पहुंचा है किसी के पीछे पीछे इतनी दूर और उस पर ये दिल मन को बहका रहा है कि कुछ बदमाशी तो की जाए। अब इन दोनों बदमाशों के चक्कर में लेने के देने ना पड़ जाए। जाने कौन सा सुर साध रहे हैं और कौन सा राग चल रहा है उनका।

और दिमाग अपने सुर और ताल मिला ले, वहाँ समझो इंसान का बन पड़ा है। उस पर जो नजर आए कोई खूबसूरत चेहरा, तो मानो हम गए काम से। डरते डरते भी आ पहुंचे हैं उनके पीछे, लेकिन वो भाई वो तो वो है, क्या कहने।

की एक टुकड़ा कभी कभी काम लेकर जाती है। जी हाँ, भले ही सामने हमसे बातें ना की हों, लेकिन खिड़की से वो भी झांकते हैं चुपके चुपके। तो क्या उधर भी चल रही है दिल और दिमाग की सरगम? क्या वहाँ भी हो रही है वही टिकड़म? अब ये बात जाने भी तो कैसे। हाँ, एक रास्ता है

इनके हर प्रस्तुति श्रोताओं को सुरों के अलौकिक संसार में ले जाती है। पंडित रोनू मजूमदार

0: अपने सभी सिख पुत्री मिशन सभी साथ चल रही है। अपने पिता कभी सभी के जीवन से जुड़ी कुछ यादें,
1: जैसे उनके कपड़े बहुत ही सादे रहते थे, कभी भी सफेद के सिवा उन्होंने पहना नहीं, एकदम सीधे सादे व्यक्ति, लेकिन उन्होंने बच्चों के ऊपर कभी भी अपना सिद्धांत लादा नहीं, लेकिन वो सिद्धांत से चलते थे तो हम देखते थे उनको, तो वो चीजें हमने अपने आप से आगे
0: तो सुनना न भूले। कार्यक्रम उजाले उनकी यादों के 14

opportunity to shoot through.

तो रिसर्च में प्यार से सकते अपने जिन फिल्मों की गीत थी वो फिल्में थी हीरो दयावान और हिना, आवाजें लता मंगेशकर, मनहर, पंकज उधवाल, गीत रचना आनंद बख्शी, अजीत कैसिकी और रविंद्र जैन की, लक्ष्मीकांत पेरिवाल और रविंद्र जैन। चित्रगीत कार्यक्रम अब यही समाप्त हो जाए। हम आकाशवाणी जमशेदपुर के विविध भारती केंद्र से बोल रहे हैं। हमारा अगला कार्यक्रम है फिल्म संवाद। आप

तीन रूप का ये गाना था, लता मंगेशकर की आवाज, संतोष आनंद के बोल से लक्ष्मीकांत किया है, आकाशवाणी जमशेदपुर का विविध भारती की ओर सुन रहे हैं।

0: the punk would just get hard to hit each other.
1: Lunch,
0: like,

से यात्रा कर रहे हैं या करते हैं, उनको उस दिन एक विशेष दिन का अनुभव हो,

Deus tem usado esses textos, eu acho,

अलग ढंग से मेरी परवरिश रही, बहुत अजीबो गरीब ढंग से कह सकते हैं, और मेरी पिटाई भी बहुत होती थी। अरे माँ हद से ज्यादा खुश थी, कोई वजह हो कभी ना भी हो, ज्यादातर ना भी हो सकती, फिर भी मेरी दिन में पिटाई एक बार तो होनी ही थी। लेकिन दूसरी तरफ इतना बेतहाशा प्यार और लाड कि जब मैं छोटी थी तब एक बहुत ही बड़को लड़कियों की एक रीत थी कि अपनी गुड़िया की शादी करवाना, बहुत थी तो हर लड़की की एक ना एक गुड़िया होती थी और प्यारी गुड़िया, तो फिर गुड़िया की शादी होती थी और बाकी सब लड़कियां फिर शादी में बुलाई जाती हो जाती थी। मेरी भी गुड़िया थी लेकिन माँ कहती थी नहीं ये सब बकवास है, क्या वह गुड़िया की शादी वादी कुछ नहीं, तो मैं कहती थी नहीं लेकिन मैं हर जगह जाती हूँ, मुझे भी तो बुलाना चाहिए, मैं भी बुलाना चाहती हूँ, तुम्हारे में भी कोई शादी वादी नहीं, क्यों करवाती थी मुझे। लेकिन एक दिन फिर मैं बहुत ही मनोहित थी और बहुत ही हद से मैंने कहा नहीं मैं शादी तो ये होके ही रहेगी, तो फिर माँ ने कहा कि अच्छा ठीक है चलो फिर मुहूर्त देखते हैं, और बाकायदा मुहूर्त देखा और फिर तुलसीबाग करके पूरा में बहुत फेमस मार्केट है, तो वहाँ से हमने एक जोड़ा खरीदा, गुड्डा गुड्डी कपड़े के थे दोनों, और गुड़िया के बाल थे अच्छे से काले काले और छोटा सा जूड़ा था और साड़ी पहनी थी, मुझे अच्छी तरह याद है हरी रंग की साड़ी थी। तो उनकी शादी हमारे घर हुई, बकायदा हम एक महीना भर पहले उसकी तैयारी में थे, मतलब तुलसीबाग से ये छोटे छोटे मणि उसको क्या बोलते हैं पर्स लाते थे, उनकी मालाएं बनाना, उनके कान के गहने बनाना, ये बनाना वो बनाना, क्या क्या क्या क्या करता था। और फिर शादी के दिन एक तकरीबन 100 बच्चों को बुलाया गया मेहमान के तौर पे, और 100-150 बच्चे बिन बुलाए भी आ गए, और माँ ने एक सफेद घोड़ी बुक की, सफेद घोड़ी अच्छे घोड़ी, फिर एक बैंड बुलाया स्काउट बैंड साफे वाले, हाँ गुलाबी साफे वाले, सब यंग 16-17 साल के जवान लड़के थे, अपने अपने वाद्य लेके आए, उनका बैंड और ये

से अपने निकले हम फराज पे रोड़ते थे, मेरे नाना से सड़क का नाम दिया था, तो वो उससे फिर अपे रोड से होते हुए फर्ग्यूसन कॉलेज रोड से होते हुए फिर वापस अगर पूरा हम देखते निमखाना तकरीबन घूम के पूरी हमारी बारात आई और कितने महीनों तक ये चर्चा रही जारी पुना में कि सही से गुड़िया की शादी

target estimates, मेरे एक फिल्म की कथा जिससे है एक स्टॉल और इस स्टॉल में रहने वाले रंग बिरंगी अजीबो गरीब पड़ोसी। तो चलो इसी फिल्म का एक गाना हो जाए।

वैसे फिल्म डायरेक्टर करके मुझे ज्यादातर पहचानते हैं लोग, लेकिन मेरे करियर की शुरुआत हुई दूरदर्शन से, टेलीविजन से। जी हाँ, मैं टेलीविजन के जो सबसे पहले छह प्रोड्यूसर थे उनमें से एक मैं थी। और एक प्रोग्राम मुझे अच्छी तरह याद है जो मैंने किया, जो आपके साथ मैं शेयर करना चाहती हूँ।

ज्यादा लोगों को जीतता है। बहुत लोगों ने अपनी अर्जियां भेजी इस कार्यक्रम के लिए। दो चार बहुत प्यारे प्यारे जवाब याद है कि एक बुजुर्ग ने कहा कि मेरे हैप्पी मैरिज का ये राज है कि मैंने बीवी को हमेशा सुबह सुबह वो जब तक बिस्तर पर ही अभी लेती है वहाँ

उसको गरम गरम प्याली चाय पेश किया। हमेशा हालांकि ये कह सकते हैं कि उसको तो मैंने एक व्रत की तरह हर रोज ये पाला, ठीक। और बीवी फिर इतनी खुश हो जाती थी वो चाय की प्याली थी कि दिन भर वो फिर दोस्तों मेरी सेवा करती थी, मेरा ख्याल रखती थी। दूसरे एक बुजुर्ग ने कहा कि हम दोनों ने एक तय किया कि चाहे कितना भी बड़ा झगड़ा हो, कितनी भी मोटी लड़ाई हो, वो लड़ाई दूसरे दिन तक नहीं घटी से ले जाना, रात को सोने से पहले उसको मिटा देना, खत्म करना और दूसरा दिन से नए तरीके नई लड़ाई के लिए तैयार। एक औरत ने कहा, मुझे बुद्धि की औरत थी, मुझे अभी भी अच्छी तरह याद है, उन्होंने कहा कि मैंने कभी भी उनको ना नहीं कहा और हमेशा अपने ही मन का किया। तो चलो एक गाना हो जाए

सारी फिल्म अगर कहूँ तो वो फिल्म का एक गाना है जो मैंने खुद लिखा है बम्बई के ऊपर बम्बई बम करके। धुआं घुटन और बीमारी यह जवा मर्द के बाल पके, हर कुछ मिलता है इस नगरी मोल तुम्हारा चार टके। और चार टके भी नहीं कम बम्बई बम्बई बम्बई बम। वहाँ आँख बिछाए बैठी राधा आंसू उसके सूख गए, बच्चे जो पीछे छोड़े हो सकल बात की भूल गए। अरे भूल गए तो क्या है गम बम्बई बम्बई बम्बई बम बम्बई बम्बई बम्बई बम। अब एक मेरा बहुत पसंदीदा गाना जिसको न मेरे फिल्म का

0: जो साथी हैं, अब आपसे कल विदा करती हूँ। अपना ख्याल रखना, हमारा भी रखना। फिर मिलते हैं। जय गोविंद।
1: ये थी मशहूर फिल्म निर्देशक प्रतिभा लेखिका और नाटककार सई परांज के द्वारा प्रस्तुत विशेष जयमाला कार्यक्रम। चलने से पहले आपको बता दें, इस कार्यक्रम का संपादन किया मनीषा सिंह ने और इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता है तेज के कामले।

के लिए ब्लड की खोज करते हैं, उनको जरूरत होती है और वक्त पर जब ब्लड नहीं मिलता तो कई लोगों की जान चली जाती है। ऐसे में जो अपनी मर्जी से ब्लड डोनेशन करने वाले लोग हैं वो एक मसीहा की भूमिका निभाते हैं। ब्लड डोनेशन सिर्फ खून देने वाले के लिए नहीं बल्कि खून लेने वाले दोनों के लिए ही

नियमित रूप से ब्लड डोनेशन करते हैं तो आपका आयरन लेवल कंट्रोल रहता है और इससे दिल की बीमारियों की संभावना कम होती है। ब्लड डोनेशन के बाद नई ब्लड सेल्स बनती है और इससे आपका ब्लड सर्कुलेशन बेहतर होता है। एक बार ब्लड डोनेशन करने से तकरीबन 650 कैलोरी तक बर्न होती है और आप अपना वेट मेंटेन कर सकते हैं।

1.5 ग्राम प्रति व्यक्ति लीटर होना चाहिए ताकि ब्लड डोनेशन के बाद किसी तरह की कमजोरी या सेहत जुड़ी किसी समस्या का सामना उसे नहीं करना पड़े। इसके अलावा अगर व्यक्ति को एचआईवी, हेपेटाइटिस, कैंसर या कोई गंभीर संक्रमण या क्रॉनिक डिजीज है तो वो ब्लड डोनेशन नहीं कर सकता। इसके अलावा प्रेग्नेंट महिलाएं या स्तनपान करने वाली महिलाएं भी ब्लड डोनेशन नहीं कर सकती है। वैसे हमने आपको बताया कि ब्लड डोनेशन करने के बाद शरीर खोए हुए खून की पूर्ति के लिए नई ब्लड सेल्स बनाना शुरू कर देता है। ये प्रक्रिया बोन मैरो को सक्रिय रखती है और शरीर को ब्लड निर्माण की प्रक्रिया में साक्षी प्रदान करती है। तो कुल मिलाकर ब्लड डोनेशन एक बहुत हेल्दी आदत भी है। हम इसे एक नियमित चीज बना लें कि हम जरूरत पड़ने पर लोगों को अपना ब्लड डोनेट करेंगे। सबसे बड़ा फुटबॉल टूर्नामेंट बनने जा रहा है। पहली बार इसमें 48 टीमें हिस्सा ले रही है और कुल 104 मुकाबले खेले जाने वाले हैं। अमेरिका, कनाडा और मेक्सिको संयुक्त रूप से इसकी मेजबानी कर रहे हैं। भारतीय फुटबॉल प्रशंसकों को मेसी, रोनाल्डो, एम्बापे, बेलिंगहैम और विनीसियस जैसे सितारों को देखने के लिए देर रात तक जाना पड़ेगा या सुबह सुबह नींद छोड़कर तुरंत स्क्रीन के सामने आना पड़ेगा। 11 जून से शुरू हो चुका फुटबॉल का वर्ल्ड कप एक टूर्नामेंट नहीं है बल्कि फुटबॉल के इतिहास की एक सनसनीखेज घटना है। हर साल 32 टीमें उतरती है, इस साल 48 टीमें उतरेंगी और 2.5 वर्षों तक चले क्वालिफिकेशन मुकाबलों के बाद ये तस्वीर साफ हुई है कि 48 टीमें 104 मैच खेलेंगी। अब तक किसी भी फुटबॉल वर्ल्ड कप में इतने ज्यादा मैच नहीं खेले गए हैं। कुल 16 शहरों में ये मैच आयोजित होंगे और अगले 39 दिन सिर्फ फुटबॉल की सनसनी होगी और धन गोल मारे जाएंगे। फीफा के सह महाद्वीपीय संघों यानी कन्फेडरेशन के जरिए टीमों का चयन हुआ है। इस बार सबसे बड़ा बदलाव ये रहा कि छोटे देशों को भी मौका मिला है। दरवाजे खुले हैं और इससे होने के कारण अमेरिका, कनाडा और मेक्सिको को सीधी एंट्री मिली है और बाकी टीम को लंबे क्वालिफाइंग टूर्नामेंट और प्ले ऑफ से होकर गुजरना पड़ा है। आपको बता दें कि ग्रुप स्टेज होगा 11 जून से 27 जून तक, राउंड ऑफ होगा 28 जून से 3 जुलाई के बीच और इसके अलावा राउंड ऑफ 16 होगा 4 जुलाई से 7 जुलाई के बीच। उसके बाद होंगे क्वार्टर फाइनल मुकाबले 9 से 11 जुलाई, सेमीफाइनल 14 और 15 जुलाई को, थर्ड पोजीशन के लिए जो मुकाबला है वो 18 जुलाई को होगा, फाइनल मैच होगा 19 जुलाई के दिन। इस टूर्नामेंट में एशिया से 9, अफ्रीका से 10, दक्षिण अमेरिका से 6, उत्तर अमेरिका से 6, ओशियाना से 1 और कुल 48 टीमें हिस्सा ले रही हैं। एस्टेका स्टेडियम जो मेक्सिको सिटी में है, इतिहास का पहला स्टेडियम बनेगा जो तीसरी बार वर्ल्ड कप की मेजबानी करेगा। इससे पहले 1970, 1986 में भी ये स्टेडियम वर्ल्ड कप की मेजबानी कर चुका है। आपको बता दें कि फाइनल मुकाबला होगा मेटलाइफ स्टेडियम न्यू जर्सी में। इस बार फुटबॉल के वर्ल्ड कप में बहुत सारे बदलाव और टेक्नोलॉजी का बहुत सारा दखल होगा। सेमी ऑटोमेटेड ऑफसाइड टेक्नोलॉजी यानी SAOT का अपग्रेडेड वर्जन यहाँ इस्तेमाल होगा। ऑफसाइड की स्थिति में असिस्टेंट रेफरी को तुरंत अलर्ट मिलेगा जिससे फैसले पहले से ज्यादा तेज और सटीक होंगे। VAR को ज्यादा अधिकार मिल गए हैं। अब गलत दिए गए कॉर्नर, गलत दूसरे येलो कार्ड और कुछ अन्य स्पष्ट रेफरिंग गलतियों की भी समीक्षा की जा सकेगी। रेफरी बॉडी कैमरे का पहली बार वर्ल्ड कप में इस्तेमाल करेगा और दर्शकों को रेफरी के नजरिए से भी कुछ फुटेज देखने को मिलेंगे। थ्रो इन और गोल किक में समय बर्बाद करने पर बहुत ज्यादा सख्ती कर दी गई है। कई परिस्थितियों में 5 सेकेंड की

छोड़ने वाले खिलाड़ी को निर्धारित समय के भीतर बाहर जाना होगा, नहीं तो टीम को नुकसान उठाना पड़ सकता है। खिलाड़ियों की 3D स्कैनिंग, AI टेक्निक का इस्तेमाल और ऑफसाइड फैसलो और प्रसारण ग्राफिक्स को बेहतर बनाने के लिए किया जाएगा। डिफेंडिंग चैंपियन अर्जेंटीना अपने वर्ल्ड कप इवेंट की शुरुआत 17 जून को अल्जीरिया के खिलाफ करेगी। भारतीय फुटबॉल फैंस को लियोनेल मेसी और उनकी टीम के मैच को देखने के लिए देर रात तक या सुबह जल्दी उठना पड़ सकता है। ग्रुप लेवल में अर्जेंटीना के तीनों मुकाबले अलग अलग समय पर रखे गए हैं। अर्जेंटीना का पहला मैच जैसे कि हमने आपको बताया 17 जून को, दूसरा मैच 22 जून को ऑस्ट्रिया के खिलाफ है और तीसरा और आखिरी ग्रुप मैच 28 जून को जॉर्डन के खिलाफ है। अगर अर्जेंटीना नॉकआउट चरण में पहुंचती है तो उसके मुकाबलों की तारीख और समय फिर आगे उनके प्रतिद्वंदियों के मुताबिक तय होगी। क्रिस्टियानो रोनाल्डो की अगुवाई वाली पुर्तगाल की टीम ने अपने अभियान की शुरुआत 17 जून को डीआर कांगो के खिलाफ करेगी और भारतीय समय अनुसार पुर्तगाल के सारे मुकाबले रात में खेले जाएंगे। टीम का दूसरा मुकाबला होगा 23 जून को उज्बेकिस्तान से और तीसरा और आखिरी ग्रुप मैच 28 जून को कोलंबिया के खिलाफ खेला जाएगा। रोनाल्डो का ये तकरीबन आखिरी वर्ल्ड कप है और सभी की नजर क्रिस्टियानो रोनाल्डो पर रहेगी। फीफा वर्ल्ड कप 1930 से खेला जा रहा है, कुल 22 बार ये आयोजन हो चुका है, मगर सिर्फ 8 देशों के पास ही वर्ल्ड कप की ट्रॉफी है। इनमें ब्राजील का नाम सबसे ऊपर आता है, जिसने सबसे ज्यादा बार फुटबॉल का वर्ल्ड कप जीता है। ब्राजील ने 10 बार ये टाइटल जीता है। फीफा वर्ल्ड कप जीतने वालों में ब्राजील, जर्मनी, इटली, अर्जेंटीना, फ्रांस, उरुग्वे, इंग्लैंड और स्पेन है। ब्राजील के पास सबसे ज्यादा फीफा वर्ल्ड कप की ट्रॉफी है, 5। 1958, 1962, 1970, 1994 और 2002 में ब्राजील फीफा वर्ल्ड कप जीत चुका है। जर्मनी 4 बार जीता है, 1954, 1974, 1990 और 2014। इटली 4 बार जीता है, 1934, 1938, 1982 और 2006। अर्जेंटीना ने भी ये फीफा वर्ल्ड कप 3 बार जीता है, 1978, 1986 और 2022 में। फ्रांस 2 बार जीता है, 1998 और 2019 में। उरुग्वे 2 बार जीता है। इंग्लैंड और स्पेन 1-1 बार ये टूर्नामेंट जीते हैं। तो फीफा वर्ल्ड कप का जो जुनून है वो पूरी तरह से हम

फिल्म समारोह का आयोजन नेशनल फिल्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन और भारत सरकार का सूचना और प्रसारण मंत्रालय करता है। ये एक ऐसा फिल्म समारोह है जिसमें डॉक्यूमेंट्री, शॉर्ट फिक्शन और एनिमेशन फिल्में दिखाई जाती है। ये दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा और सबसे पुराना डॉक्यूमेंट्री फिल्म समारोह है। आपको बता दें कि मुंबई इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का आरंभ सन 1990 में हुआ था। यह फिल्म समारोह हर दूसरे वर्ष आयोजित किया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में सर्वश्रेष्ठ दृश्य चित्र को गोल्डन कॉर्न पुरस्कार दिया जाता है और 10 लाख रुपए नगद मिलते हैं। इस समारोह में इस वर्ष कुल मिलाकर 55 लाख रुपए के पुरस्कार दिए जाएंगे। प्रतियोगिता श्रेणी के सभी पुरस्कारों का निर्णय अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय जूरी के द्वारा किया जाता है। प्रतियोगिता फिल्मों के अलावा AIFF जूरी रेट्रोस्पेक्टिव, बेस्ट ऑफ द फेस्टिवल, MIFF प्रिज्म, कंट्री फोकस डॉक्यूमेंट्री और रीस्टोर क्लासिक जैसे कई विशेष पैकेज इस फिल्म समारोह का हिस्सा है। इस फिल्म समारोह के दौरान पैनल चर्चा, एक खुला मंच, सेमिनार और डॉक्यूमेंट्री फिल्म निर्माण पर कार्यशालाएं भी आयोजित की जाएंगी। ये फिल्म निर्माताओं और फिल्म प्रेमियों के लिए एक अनूठा मंच है जहां आकर वो अपने विविध दृष्टिकोण साझा कर सकते हैं और आगे बढ़ने के अवसरों का पता लगा सकते हैं। इस फिल्म समारोह में एक सेक्शन है ब्रिज, जिसमें भारत और दुनिया भर की छोटी सी शानदार डॉक्यूमेंट्री फिल्में दिखाई जाएंगी। इस फिल्म समारोह में वेव डॉक बाजार का भी आयोजन किया जा रहा है। ये एक ऐसा मंच है जो फिल्म निर्माण की यात्रा को पोषित करेगा और गति प्रदान करेगा। इसमें है एक व्यूइंग रूम जहाँ रजिस्टर्ड रिप्रेजेंटेटिव को एक समूह के सामने अपनी डॉक्यूमेंट्री, लघु फिल्म या एनिमेशन फिल्म प्रदर्शित करनी होगी। इस तरह से ये जगह वितरण सौदे हासिल करने, सह निर्माताओं को आकर्षित करने और फिल्म महोत्सव स्क्रीनिंग के लिए पैसे जुटाने का एक लॉन्च पैड बनेगा। इसके अलावा एक इमर्सिव मार्केट भी है जो पहली बार शामिल किया जा रहा है। इसमें इमर्सिव कंटेंट क्रिएटर्स, प्रोड्यूसर्स और टेक्नोलॉजी पार्टनर्स के लिए एक मिलन स्थल होगा जहां आकर वो आपस में कोलैबोरेट कर पाएंगे। अनुभवों पर केंद्रित ये मार्केट नई परियोजनाओं को प्रदर्शित करने और सहयोग को बढ़ावा देने का काम करेगा। इस बार के फिल्म समारोह में कई मास्टर क्लासेस भी आयोजित की जाएंगी, जैसे फास्ट फिल्म या माइक्रो ड्रामा, सिनेमा का फास्ट फैशन है या फिर विचार से रूपरेखा तक एक दृश्य की संरचना, मूल शिल्प और दृश्य भाषा, सिनेमेटोग्राफी की आत्मा, ये भी एक कार्यशाला आयोजित की जाएगी। इस फिल्म समारोह में आप भी बतौर डेलीगेट रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। साइट है my.mifff.in। ये था आज का विद्या का कार्यक्रम। इस कार्यक्रम के लिए शोध आलेख

0: श्रृंखला के अंतर्गत मुंशी प्रेमचंद की लिखी कहानी स्वामिनी का दूसरा भाग सुनिए। वाचक स्वर ममता सिंह। इस कहानी में अब तक आपने सुना
1: राम प्यारे और राम दुलारी दो सगी बहने थे। दोनों का विवाह मथुरा और बिजू दो सगे भाइयों से हुआ। दोनों बहने मेघे की तरह ससुराल में भी प्रेम और आनंद से रहने लगे। फिर रात को पेंशन मिली, दिन भर द्वार पर बैठे गपशप करते, भरा पूरा परिवार देख देख प्रसन्न होते और अधिकतर धर्म चर्चा में लगे रहते। लेकिन देव गति से बड़ा लड़का बिरजू बीमार पड़ा और आज उसे मरे हुए 15 दिन बीत गए। आज अपनी बहू को देख कर एक क्षण के लिए उसकी आंखें सजल हो गई। कदाचित उसने सोचा था घर स्वामिनी बनकर विधवा के आंसू पुछ जाएंगे, कम से कम उसे इतना कठिन परिश्रम न करना पड़ेगा। इसलिए उसने भंडारे की कुंजी बहू के सामने फेंकी थी। वैधव्य की व्यथा को स्वामित्व के गर्व से दबा देना चाहता था। कई महीने बीत गए। प्यारी के अधिकार में आते ही उस घर में जैसे वसंत आ गया। भीतर वहाँ जहाँ देखे किसी निपुण प्रबंधक के हस्त कौशल सुविचार और सुरुचि के चिन्ह दिखते थे। प्यारी ने गृह यंत्र की ऐसी चाबी करती थी कि सभी पोते ठीक ठीक काम करने लगे थे। भोजन पहले से अच्छा मिलता, समय पर मिलता, दूध ज्यादा होता है, घी ज्यादा होता है और काम ज्यादा होता है। प्यारी न खुद विश्राम लेती है न दूसरों को विश्राम देने देती है। घर में कुछ ऐसी बरकत आ गई है कि जो चीजें मांगो घर ही में निकल आती है। स्वामित्व के कवच पर धौर, ताने, धमकी किसी का भी असर न होता। उसकी स्वामिनी कल्पना इन आघातों में और भी स्वस्थ होती थी। वो गृहस्थी की संचालिका है, सभी अपने अपने दुख उसी के सामने रोते हैं, पर जो कुछ वो कहती है वही होता है। इतना उसे प्रसन्न करने के लिए काफी था। गांव में प्यारी की सराहना होती थी।
0: आगे सुनिए।
1: कई दिन बाद दुलारी के कड़े बनकर आ गए। प्यारी खुद सुनार के घर दौड़ दौड़ के गई। संध्या हो गई थी। दुलारी और मथुरा हाथ से लौटे। प्यारी ने नए कड़े दुलारी को दिए। दुलारी निहाल हो गई। सच पर कड़े पहने और दौड़ी हुई बरौठे में जाकर मथुरा को दिखाने लगी। प्यारी बरौठे के द्वार पर छिपी खड़ी ये दृष्टि देखने लगी। उसकी आंखें सजल हो गई। दुलारी उससे कुल 3 साल ही तो छोटी है, पर दोनों में कितना अंतर है। उसकी आंखें मानो उस दृश्य पर जम गई। दंपत्ति का वो सरल आनंद, उनका प्रेमालिंगन, उनकी मुक्त मुद्रा प्यारी की तख्ती से बन गई। यहाँ तक कि दीपक के धुंधले प्रकाश में वे दोनों उसकी नजरों से गायब हो गए और अपने ही अतीत जीवन की एक लीला आंखों के सामने बार बार नए रूप में आने लगी। संसार से दास ने पुकारा, बड़ी बहू एक पैसा ला दो, तम्बाकू मंगवाओ। प्यारी की समाधि दूर गई। आंसू पोंछते हुए भंडारे में पैसा लेने चली गई। एक एक करके प्यारी के गहने उसके हाथ से निकलते जाते थे। वो चाहती थी मेरा घर गांव में सबसे संपन्न समझा जाए और उस महत्वाकांक्षा का मूल्य देना पड़ता था। कभी घर की मरम्मत के लिए, कभी बैलों की नई गोई खरीदने के लिए, कभी नातेदारों के व्यवहारों के लिए, कभी बीमारों की दवा दारू के लिए रुपए की जरूरत पड़ती रहती थी। और जब बहुत कतर जोर करने पर भी काम न चलता तो वो अपनी कोई न कोई चीज निकाल देती और चीज एक बार हाथ से निकल कर फिर न लौटती थी। वो चाहती तो इनमें से कितने ही खर्चों को टाल जाती, पर जहाँ इज्जत की बात आ पड़ती थी वो दिल खोल कर खर्च करती। अगर गांव में खेती हो गई तो क्या बात रही, लोग उसी का नाम तो धरेंगे। दुलारी के पास भी गहने थे, दो ही चीजें मथुरा के पास भी थी, लेकिन प्यारी उनकी चीजें न छूटी। उनके खारे पहनने के दिन है वे उस जंजाल में चुप थे। दुलारी को लड़का हुआ तो प्यारी ने धूम से जन्मोत्सव मनाने का प्रस्ताव रखा। शिवदास ने विरोध किया, क्या फायदा, जब भगवान की दया से सगाई ब्याह के दिन आएंगे तो धूमधाम कर लेना। प्यारी का हौसला से भरा दिल भला क्यों मानता। बोली, कैसे बात कहते हैं दादा, पहलौठी लड़के के लिए भी धूमधाम न हुआ तो कब होगा, मन तो नहीं मानता। दुनिया क्या कहेगी, नाम बड़े दर्शन थोड़े। मैं तुमसे कुछ नहीं मांगती, अपना सारा इंतजाम खुद कर लूंगी, गहनों के माथे जाएगी और क्या। श्री दास ने चिंतित होकर कहा, इस तरह एक दिन धागा भी न बचेगा। कितना समझाया बेटा, भाई भाव जाए किसी के नहीं होते, अपने पास दो सीधे रहेंगे तो सब मुंह जोड़ेंगे, नहीं कोई सीधी बात नहीं करेगा। प्यारी ने ऐसा मुंह बनाया मानो वो ऐसी बूढ़ी बातें बहुत सुन चुकी है और बोली, जो अपने है वे भी न पूछे, तो भी अपने तो अपने ही रहते हैं। मेरा धर्म मेरे साथ है, उनका धर्म उनके साथ है। मर जाऊंगी तो क्या छाती पर लाद के ले जाऊंगी। धूमधाम से जब महोत्सव मनाया गया, बरही के दिन सारी बिरादरी का खोज हुआ, लोग खाते कर चले गए तो प्यारी दिन भर की थकी मांगी आंगन में एक टाट का टुकड़ा बिछा कर कमर सीधी करने लगी, आंखें झपक गई। मथुरा उसी वक्त घर में आया, नवजात पुत्र को देखने के लिए उसका चित्त व्याकुल हो रहा था। जुलानी सौर गृह से निकल चुकी थी, गर्भावस्था में उसकी देह क्षीण हो गई थी, मुंह भी उतर गया था, पर आज स्वच्छता की लालिमा मुख पर छाई हुई थी। मातृत्व के गर्व और आनंद ने अंगों में संजीवनी सी भर रखी थी। सौर के संयम और पौष्टिक भोजन ने देह को चिकना कर दिया था। मथुरा उसे आंगन में देखते ही शरीर आ गया और एक बार

उसके रुद्रामग्न होने का निश्चय करके उसने शिष्य को गोद में ले लिया और उसका मुंह चूमने लगा। आनंद पाकर प्यारी की आंखें खुल गई, पर उसने नींद का बहाना किया और अधखुली आंखों से ये आनंद क्रीड़ा देखने लगी। माता और पिता दोनों बारी बारी से बालक को चूमते, गले लगाते और उसके मुंह को निहारते थे। कितना स्वर्गीय आनंद था। प्यारी की दृष्टिक लालसा एक क्षण के लिए स्वामिनी को भूल गई। जैसे लगाम से मुखबद्ध बोझा से लदा हुआ हाथे वाले चाबुक से पीड़ित दौड़ते दौड़ते बेदम सुरंग हिमनाने की आवाज सुनकर सरौतियां खड़ी कर लेता है और परिस्थिति को भूल कर एक दबी हुई हिमनार से उसका जवाब देता है। कुछ इसी तरह की दशा प्यारी की हुई। उसका मातृत्व जो पिंजरे में बंद मूक निश्चेष्ट पड़ा हुआ था, समीप से आने वाली मातृत्व की सराहना सुनकर जैसे जाग पड़ा और चिंताओं के उस पिंजरे से निकलने के लिए पंख फड़फड़ाने लगा। मथुरा ने कहा, ये मेरा लड़का है। दुलारी ने बालक को गोद में चिमटा कर कहा, हाँ कैसे नहीं, तुम्हीं ने तो 9 महीने पेट में रखा है, सासत तो मेरी हुई, बाप कहलाने के लिए तुम कूद पड़े। मथुरा ने कहा, मेरा लड़का ना होता तो मेरी सीरत का क्यों होता, तेरा मोरा रंग रूप सब मेरा ही तो है। दुलारी बोली, इससे क्या होता है भला, बीज बनने के घर से आता है, फिर किसान का होता है, ऊपर जमीन की नहीं होती, किसान की होती है। मथुरा ने कहा, बातों में भला तुमसे कोई जीतेगा। मेरा लड़का बड़ा हो जाएगा तो मैं द्वार पर बैठकर मजे से गपशप किया करूंगा। दुलारी बोली, मेरा लड़का पढ़ेगा लिखेगा और कोई बड़े ओहदे पर काम करेगा, तुम्हारी तरह दिन भर बैलों के पीछे थोड़ी नहीं चलेगा। मालिक से कहना है कल एक पालना बनवा दो। मथुरा बोले, अब बहुत सवेरे ना उठा करना और छाती फाड़ कर काम भी न करना। दुलारी बोली, ये महारानी जी ने देंगी। मथुरा ने कहा, मुझे तो बेचारी पर दया आती है, उसके कौन बैठा हुआ है, धनी लोगों के लिए तो बरती है, भैया होते तो अब तक 2-3 बच्चों की माँ बन गई होती। प्यारी के कंठ से आंसुओं का ऐसा वेग उठा कि उसे रोकने में सारी देह कांप उठी। अपना वंचित जीवन उसे मरुस्थल सा लगा जिसकी सूखी रेत पर वो हरा भरा बाग लगाने की निष्फल चेष्टा कर रही थी। सहसा सूरदास ने भीतर आकर कहा, बड़ी बहू क्या सो गई, बाजे वालों को अभी भरोसा नहीं मिला है, क्या कह दो उनसे। कुछ दिनों के बाद शिवदास भी इस दुनिया से चले गए। उधर दुलारी के 2 बच्चे और हुए, वो भी अधिकतर बच्चों के लालन पालन में व्यस्त रहने लगी। खेती का काम मजदूरों पर आ पड़ा। मथुरा मजदूर तो अच्छा था, संचालक अच्छा न था। उसे स्वतंत्र रूप से काम लेने का कभी अवसर न मिला था। खुद पहले भाई की निगरानी में काम करता रहा, बाद में पिता की निगरानी में काम करने लगा। खेती का तार भी न जानता था। वही मजदूर उसके यहाँ दिखते थे जो मेहनती नहीं खुशावत करने में कुशल होते थे। इसीलिए प्यारी को अब दिन में 2-4 चक्कर हार का भी लगाना पड़ता। कहने को तो अब मालकिन थी, पर वास्तव में घर भर की सेविका थी। मजदूर भी उससे पेड़िया बदलते, जमींदार का प्यादा भी उस पर धौस जमाता, भोजन में भी शिकायत करनी पड़ती। लड़कों को तो जितनी बार मांगे उतनी बार कुछ न कुछ चाहिए। दुलारी तो लड़कोरी थी, उसे भी भरपूर भोजन चाहिए। मथुरा घर का सरदार था, उसके इस अधिकार को भला कौन छीन सकता था। मजदूर भला क्यों रियायत करने लगे थे, सारी कसर बेचारी प्यारी पर निकलती थी। वो एक फालतू चीज थी, अगर आधा पेट खाए तो किसी को कोई हानि नहीं हो सकती थी। 30 वर्ष की अवस्था में उसके बाल पक गए, कमर झुक गई, आंखों की ज्योति कम हो गई, मगर वो प्रसन्न थी। स्वामित्व का गौरव इस सारे जख्म पर मरहम का काम करता था। एक दिन मथुरा ने कहा, भाभी अब तो कहीं परदेश जाने का जी होता है, यहाँ कमाई में कोई बरकत नहीं, इसी तरह पेट की रोटियाँ चल जाती हैं, वो भी रोज होकर। कोई आदमी पूरब से आए हैं, वे कहते हैं वहाँ 2-3 रुपए रोज की मजदूरी मिलती है, 4-5 साल भी रह गया तो मानो माल हो जाऊंगा। अब आगे लड़के वाले हुए, इनके लिए तो कुछ न कुछ करना ही पड़ेगा। दुलारी ने समर्थन किया, हाँ हाथ विचार कैसे होंगे,

0: लड़कों को तो आदमी बनाना है ना। प्यारी ये प्रस्ताव सुनकर अवाक रह गई। उनका मुंह ताकने लगी। इससे पहले इस तरह की बातचीत कभी न हुई थी। भला इसलिए तुम कैसे सवार हो गई? उसे संदेह हुआ, शायद मेरे कारण ये भावना उत्पन्न हुई है। बोली, मैं तो जाने को न कहूंगी, आगे जैसी तुम्हारी इच्छा हो। लड़कों को पढ़ाने लिखाने के लिए यहाँ भी तो बदलता है, फिर क्या नित्य इंजन बने रहेंगे? अरे दो तीन साल भी खेती बन गई तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। मथुरा ने कहा, इतने दिन खेती करते हो गए, अब तक न बनी तो अब क्या बन जाएगी? इसी तरह एक दिन चल देंगे, मन के मन में रह जाएगी। फिर अब पौरुष भी तो थक रहा है, ये खेती कौन संभालेगा? लड़कों को मैं इस शक्ति में डोज कर उनकी जिंदगी नहीं खराब करना चाहता। प्यारी ने आंखों में आंसू लाकर कहा, भैया अगर मेरी ओर से कोई बात हो तो अपना घर बार अपने हाथ से करो, मुझे एक टुकड़ा दे देना, पड़ी रहूंगी। मथुरा आर्द्र कंठ से बोले, भाभी ये तुम क्या कहती हो? तुम्हारे ही संभाले ये घर अब तक चला है, नहीं तो रसातल को चला गया होगा। इस गृहस्थी के पीछे तुमने अपने को मिट्टी में मिला दिया, अपने बेल घुला डाली। मेरी भी आंखें हैं, सब कुछ समझता हूँ, देखता हूँ। हम लोगों को जाने दो, भगवान ने चाहा तो फिर घर संभल जाएगा। तुम्हारे लिए हम बराबर खर्च वरच भेजते रहेंगे। प्यारी ने कहा, जो ऐसा ही है तो तुम चले जाओ, बाल बच्चों को कहाँ कहाँ बांधे फिरोगे। दुलारी बोली, ये कैसे हो सकता है बहन, यहाँ देहात में लड़के क्या पढ़ेंगे लिखेंगे? बच्चों के बिना उनका जी वहाँ न लगेगा, पर देश में अकेले जितना खर्च होगा उतने में सारा घर आराम से रहेगा। प्यारी बोली, तो मैं यहाँ रहकर क्या करूँगी, मुझे भी लेके चलो।
1: स्वामी, मुंशी प्रेमचंद की लिखी इस कहानी का दूसरा भाग अभी आप सुन रहे थे सुनो कहानी के अंतर्गत। वाचक स्वर ममता सिंह, प्रस्तुति सहायिका आकांक्षा सिंह, प्रस्तुतकर्ता हर्ष

आपने मैंने कहा चलो एक लड़ाई एक फिल्म का गीत संगीत का रखा है, संगीत ही मेन स्पेशल लगा। ठीक है, लोग कार्यक्रम जारी रहेगा इस ब्रेक के बाद।

से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम चित्र लोक। प्रवीण भारद्वाज का लिखा ये गीत अभिजीत अंतर्याग्नि का योग सुरजीत और डब्बू में रुकिया है। फिल्म का नाम मैंने

कि बादल उमड़ घुमड़ रहे हैं मगर बड़ा चीज नहीं है। वो जो घुटन है उस घुटन को डरवाने के संभाव में जब तक

你分裂之后我就打身体成大能成大下去身体真身体哦如身体有吗你不会吧

हिंदू परंपराओं को नया जीवन मिला है, साथ ही बेहतर सड़कें, स्वच्छ सुविधाएं और आधुनिक सेवाएं लोगों के लिए घरों तक पहुंचना अधिक आसान बना रही है। आज की दुनिया भारत की संस्कृति, परंपराओं और जीवन शैली में भी

नावड़े में 1912 में हुआ। उनका बचपन सिंधुदुर्ग जिले के कस्बा कोडाल में बीता, जो कि महाराष्ट्र के कोंकण का जाना माना प्रदेश है। यहाँ वो अपने मामा के पास पढ़ाई लिखाई के हेतु भेजे गए थे। महाराष्ट्र के इस कोंकण प्रदेश में दशावतारी नाटकों का चलन प्राचीन काल से ही है। इसका प्रभाव वसंत देसाई के बाल मानस पर पड़ना लाजमी था। अनेक नाटकों में वे बतौर अभिनेता और गायक भाग लेने लगे थे। 1929 में अगली पढ़ाई के लिए वे कोल्हापुर पहुंचे। वहां पर इनका परिचय हुआ मराठी और हिंदी सिनेमा के वरिष्ठ फिल्मकार छत्रपति शांताराम राजाराम वसुदुरे

वसंत देसाई ने फिल्म कुमी संजर में अदाकारी भी की थी। ये एक मूक सब्जी दोस्तों वसंत देसाई प्रभास फिल्म कंपनी की ही जगह में रहा करते। दिन भर काम करने के बाद रात्रि विश्राम से पहले वो श्रम परिहार हेतु हारमोनियम बजाया करते। एक बार वी शांताराम जी के कानों पर जब ये आवाज पड़ी तो वो चकित हुए और फिर उन्होंने संगीत विभाग में बतौर असिस्टेंट के रूप में वसंत देसाई को भेज दिया। महान संगीतकार गोविंद राव टेंबे के संगीत निर्देशन में प्रभास फिल्म कंपनी ने जो पहली बोलती फिल्म बनाई अयोध्या का राजा उसके वो सहायक संगीत निर्देशक थे। ये फिल्म हिंदी में अयोध्या का राजा नाम से बनी थी। जैसा कि वी शांताराम जी हमेशा किया करते थे, जो भी फिल्म मराठी में बनाते उसका हिंदी संस्करण भी हुआ करता। इस दौर के दिग्गज संगीतकार केशवराव भोले और मास्टर कृष्णराव कुलमरीकर इनके भी वसंत देसाई सहायक रहे थे। वी शांताराम की बतौर निर्देशक जो पहली फिल्म थी उसका नाम था पड़ोसी और मराठी में जो केदारी नाम से बनी थी। इसके संगीतकार थे मास्टर कृष्णराव कुलमरीकर। आगे बढ़ते हैं गूंज उठी शहनाई फिल्म के इस

क्योंकि एस बी वर्षक लिखित नाटक था, इसका संगीत दिया था। एक और मराठी नाटक छाया को भी उन्होंने संगीत दिया था। वसंत देसाई को बतौर संगीतकार हिंदी फिल्मों में पहला ब्रेक मिला जेवीएच वारिया की फिल्म शोभम साल था 1942। उन्हें सही मायनों में ख्याति प्राप्त हुई इसी साल यानी 1942 में आई फिल्म शकुंतला से। हुआ यूं कि वी शांताराम ने अक्टूबर 1942 में अपनी एक अलग फिल्म कंपनी बनाई राज कमल स्टूडियो। इसके बैनर तले बनने वाली पहली फिल्म थी शकुंतला। शकुंतला का मुख्य किरदार किया था वी शांताराम की पत्नी जयश्री ने। चंद्रमोहन से दुष्यंत और स्वयं वी शांताराम जी ने प्रियम वत की भूमिका निभाई थी। कुल 13 गाने थे इस फिल्म में और एक गाना फिल्म के संगीतकार वसंत देसाई ने भी गाया था। फिल्म काफी चली और वसंत देसाई को भी ख्याति प्राप्त की। वसंत देसाई का संगीत शास्त्रीय रागों की गरिमा होता था और सहज मधुरता का रसीलापन यह होता था। दोस्तों, वसंत देसाई मर्मज्ञ संगीतकार थे। ये एक दुर्भाग्य की बात है कि कमर्शियल फिल्मों में उन्हें सफलता नहीं मिली। वो व्यावहारिक दुनिया से अनभिज्ञ थे, उनकी बारीकियों को वो नहीं समझते थे, इसलिए दुनियावी बातों की तरफ उनका ध्यान कम था। संगीत की बारीकियों की ओर उनका ध्यान मगर बहुत लगा हुआ होता था। उनकी नजर पहनी थी संगीत की तरफ। हीरे को जैसे जौहरी ही पहचानता है, वरिष्ठ संगीतकार अनिल विश्वास को इस हीरे की पहचान थी। विविध भारती के संगीत चर्चा में जब वे पधारे थे तो आपको भी जरूर याद होगा, वसंत देसाई की सांगीतिक बुद्धि की सराहना करते हुए उन्होंने बताया था कि आशीर्वाद फिल्म का ये जो गाना है जो लता जी ने गाया था, कैसे उन्होंने सिर्फ निशान

के नए संगीत अपने परमोच्च आनंद लहरियों से सबको मुग्ध कर रहा हो और अचानक सितार का तार टूट जाए या बिजली गुल हो जाए, ऐसा ही एक दिन अकस्मात वसंत देसाई के जीवन में आया और उनके धड़कन का तार थम गया। दिन था 22 दिसंबर 1975। वसंत देसाई का संगीत अमर है, जिसके धूम प्रकाश है।

उच्चत अली कपूर का नमस्कार। तुम्हारी आंखों में कुछ तो बात है जो दिल के अंदर चली जाती है। तुम्हें देखा तो ये ख्याल आया जिंदगी कितनी खूबसूरत हो सकती है। अच्छा जी, और तुम मेरी जिंदगी का वो हिस्सा हो जिसे मैं हर सांस में महसूस करती हूँ। हर सुबह तुमसे बातें करना चाहती हूँ। तुम्हारे बिना दिन अधूरा सा लगता है। तुम्हारे साथ गुजरा हर पल एक नई कहानी लिखता है। तुम मेरी जिंदगी का वो गीत हो जो कभी खत्म नहीं होता।

जाता है जब तू मेरी आंखों में आ जाता है। मोहब्बत सिर्फ जज्बात नहीं होती, ये रूह की जरूरत होती है। सच तेरे नाम से शुरू होती है मेरी सुबह और तेरे ख्याल में रात चलती है। उसके अलावा मैं क्या मांगू उस खुदा से, उसके अलावा मैं क्या मांगू उस खुदा से, और किसी चीज का

कार्यक्रम विविध भारती पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम छाया गीत। कितनी दिलकशी थी कहा जिंदगी में हमने जब तक आपको चाहा न था। जी चाहता है कि साथ चले तो आहट भी न आए अपनी, दरमियान हम भी न हो जो तुझे तनहा चाहे। सुनो ना खिड़की जैसी आंखों से खुली रहे, मेरे दिल में महताब उतरता है इसी जीने से। अगर होता है इत्तेफाक तो यूं क्यों नहीं होता, अगर होता है इत्तेफाक तो यूं क्यों नहीं होता कि तुम रास्ता भूलो

अपने दिल को कैसे हमने साफ किया, दिन में तुम्हारे ख्वाब सजाए, शब भर तुमको याद किया। किताब जिंदगी का हर पन्ना महकता है, कुछ में आपकी आरजू है, कुछ में आपका ख्याल है। देखने के लिए तो सारा आलम ही कम है, चाहने के लिए एक चेहरा ही बहुत। किसी पाबंदे मोहब्बत से पूछना वो ही बतलाएगा इस दीवाने का जंजीर।

समस्तीपुर के विविध भारती केंद्र से बोल रहे हैं। एफएम बैंड 100.8 मेगाहर्ट्ज पर रात्रि के 11 बजने वाले हैं और संपन्न होती है हमारी आज की सभा। कलकत्ता 5:55 पर हम आपकी